हम आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2026। सवेरे के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की सभा आरंभ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट

0: का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है।

0: में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
2: विविध भारती

आज का सुविचार हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। मुस्कुरा कर उठिए, क्योंकि खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर और शाम को पुनः 6:35 पर आप जी माफ कीजिएगा 6:35 पर प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरित मानस गान, जिसका भाग 193 प्रसारित होगा। 6:45 पर संगीत सरिता, जिसका पुनः प्रसारण शाम को 6:45 पर आप सुनते हैं, जिसके अंतर्गत श्रृंखला आप सुन रहे हैं एसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा, इसका भाग 8 आप सुनेंगे। सुबह 7 आप सुनते हैं पुराने गीतों के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, हम है राही प्यार की। ये कार्यक्रम 7:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर आज के फनकार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा, प्रोटीन और विटामिन का महत्व, इस विषय पर डॉक्टर मीनल शाह से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुति रामकरण मीणा, प्रसारण का समय सुबह 10। रंग तरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11। 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी। दोपहर 1 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। दो बजकर 30 पर सदाबहार नगमे। 3 कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी। अपराध बोध से बचना जरूरी, मुहावरों की दुनिया आंखों का तारा होना, उद्यमी महिला कल्पना सरोज की बातें होंगी। बातें हल्की फुल्की, परीक्षा परिणाम पर कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलाइट के सितारे ये आप सुनेंगे। पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की है। शाम 5 छाया गीत। 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:30 पर झरोखा। 6:35 पर संध्या रंजन, फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे शाम 7। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिएगा पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटिका प्रेम दीवाना, लेखन ब्रजभूषण का है, निर्देश

निदेशक पुरुषोत्तम दार्वेकर। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर ममता सिंह का। 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का भाग 193।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज सुरों की वर्षा हो रही है। हमारे साथ हैं अनूप जलोटा जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं।
2: धन्यवाद जी। बहुत
1: भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी, और हम आज उनसे जानना चाहते हैं कि उनके तमाम भजन लोग पसंद करते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें किन गायकों के गाए भजन पसंद आते हैं, और उन गायकों के बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को, उनके गाए भजन गा के हमें सुनाएं।
2: भजन सबने गाए हैं, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसने भजन ना गाए हो। और अब तो ये भी सिद्ध हो गया कि जो भजन है वो शास्त्रीय गायन का एक अंग है, क्योंकि जितने भी शास्त्रीय गायक हैं वो बंदिश गाने के बाद में आखिर में भजन जरूर गाते हैं, चाहे वो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हों, चाहे डीवी पलुस्कर जी हों, चाहे पंडित जसराज जी हों, या भीमसेन जोशी जी हों, या किशोरी आमोनकर जी हों, सब भजन गाते हैं। गजल कोई नहीं गाता अपने प्रोग्राम के एंड में। इसका मतलब गजल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक का अंग नहीं है
1: जी।
2: लेकिन भजन है, नहीं तो कोई ना गाता, लेकिन सभी गाते हैं। तो भजन डीवी पलुस्कर जी ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो आज तक लोग गा रहे हैं।

0: भीमसेन जोशी जी, उनके भजन गांव-गांव में गाए जाते हैं
1: जी।
0: लोग अपने कार्यक्रम को उनके भजन से ही समापन करना पसंद करते हैं।

एक ऐसे कंपोजर जिन्होंने बड़े सुंदर भजन सबसे गवाए, श्याम तेरी बंसी, रविंद्र जैन जी।

तो ऐसे कोई गायक है ही नहीं जिन्होंने भजन अंग को न छुआ। इतने प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह साहब जिन्होंने गजलों को अमर कर दिया, उन्होंने जब भजन गाए तो सबका दिल जीत लिया।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बस आंखें बंद करके सुनते रहें और अनूप जलोटा जी हमें भजन सुनाते रहें, बस ऐसे ही लग रहा है। एक सवाल मेरे जहन में आया जब मैं ध्यान से सुन रही थी। नई पीढ़ी एक अलग तरह के संगीत और संस्कृति में गुम है, ऐसा क्या किया जाए अनूप जी, आप बताएं कि भजन की ओर उनका रुझान हो, उन्मुख हो।
1: बस ऐसे भजन गाए जाएं, ऐसी लागी लगन जैसे,
0: क्या बात है,
1: हे राम जैसे, शाम तेरी बंसी जैसे, तो यंग जनरेशन सुनने लगेगी। लेकिन बहुत मुश्किल गाएंगे तो नहीं सुनेंगे लोग, तो कोशिश यही की जाए कि सरलता सुगमता सामने आ जाए तो सब उसे प्रेम करेंगे
0: जी। अब अनूप जी, चलते चलते आपकी किसी भजन का मुखड़ा हमें सुनाएं।

0: राम नाम अति मीठा है। अनूप जी, आपके गायकी के माध्यम से हमारे श्रोता अपनी आंखों से देख रहे हैं ये चित्र, आपके शब्द चित्र के जरिए। और अब वही घड़ी आ गई है जब हम समापन करते हैं, तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं ये कड़ी। कल फिर मिलेंगे संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ। सबको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई।

0: प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

चलो उठें दोस्तों, कुछ करना है, कुछ पाना है। भीड़ में हमें अपने आप को पहचानना है। हर सुबह को एक नई सुबह मानकर जिंदगी को सफल बनाना है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ नई सुबह, नई आशा, नई किरण, नई मुस्कान, नई खुशी और नए दिन का स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़ में। और अब करते हैं आज के दिन का आगाज आज के सुविचार के साथ। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यही मुस्कान की ताकत है।

श्रोताओं, जीवन में जीत और हार दोनों का अपना महत्व होता है। हर व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है और हार से बचना चाहता है, लेकिन वास्तविक जीवन में हर समय जीतना संभव नहीं होता। कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती और हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में व्यक्ति का व्यवहार ही उसके वास्तविक चरित्र को दर्शाता है। कहा जाता है कि अगर एक हारने वाला इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला इंसान जीतने की खुशी भी खो देता है। यह विचार जीवन की गहरी सच्चाई को प्रकट करता है। सामान्यतः हार के बाद लोग निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या क्रोध में आ जाते हैं। वे अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हार के बाद भी मुस्कुराता है, वह वास्तव में मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। उसकी मुस्कान यह दर्शाती है कि उसने हार को अंत नहीं बल्कि सीख और अनुभव के रूप में स्वीकार किया है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से टूटता नहीं बल्कि उनसे और अधिक मजबूत बनता है। हार के बाद मुस्कुराना आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। यह मुस्कान सामने वाले को यह संदेश देती है कि असफलता केवल एक क्षणिक स्थिति है, स्थायी नहीं। जब हारने वाला व्यक्ति शांत और प्रसन्न दिखाई देता है तो जीतने वाले को यह महसूस होने लगता है कि उसकी जीत उतनी बड़ी नहीं है जितनी वह समझ रहा था। उसे एहसास होता है कि शक्ति केवल जीत में नहीं बल्कि हार को सम्मानपूर्वक स्वीकार करने में होती है। में अनेक महान व्यक्तियों ने असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अब्राहम लिंकन को कई बार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य और सकारात्मकता नहीं छोड़ी। वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसी प्रकार थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार किया। यदि वे हर असफलता पर निराश हो जाते तो शायद दुनिया इतनी बड़ी खोज से वंचित रह जाती। दोस्तों, यह मुस्कान सामने वालों को यह संदेश देती है कि असफलता केवल एक क्षणिक स्थिति है, स्थायी नहीं। वास्तव में हार जीवन का अंत नहीं होती। हार हमें अपनी कमियों को समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति हार में भी मुस्कुराना जानता है, वह जीवन की कठिनाइयों से कभी नहीं डरता। उसकी सकारात्मकता दूसरों को भी प्रेरित करती है। हार की

मुस्कुराना बहुत बड़ी ताकत है। यह केवल आत्मविश्वास ही नहीं बल्कि परिपक्वता और जीवन की प्रति सही दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। जीतने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए खुश हो सकता है, लेकिन हारकर भी मुस्कुराने वाला व्यक्ति लोगों के दिलों में स्थायी सम्मान प्राप्त कर लेता है, और यही वास्तविक विजय है।

छोटे से गांव में अर्जुन और विक्रम नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही पढ़ाई और खेलों में बहुत अच्छे थे। गांव में जब भी कोई प्रतियोगिता होती, दोनों उसमें भाग लेते, लेकिन अर्जुन हमेशा जीत जाता और विक्रम अक्सर दूसरे स्थान पर रह जाता। धीरे धीरे अर्जुन को अपनी जीत पर बहुत गर्व होने लगा। उसे लगने लगा कि उससे बेहतर कोई नहीं है। दूसरी ओर विक्रम शांत स्वभाव का था। वह हारने के बाद भी मुस्कुराकर अर्जुन को बधाई देता और फिर अगले प्रयास की तैयारी में लग जाता। एक दिन गांव में बड़ी दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित हुई। पूरे जिले से खिलाड़ी आई। अर्जुन को पूरा विश्वास था कि इस बार भी वही

छोटे से गांव में अर्जुन और विक्रम नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही पढ़ाई और खेलों में बहुत अच्छे थे। गांव में जब भी कोई प्रतियोगिता होती, दोनों उसमें भाग लेते, लेकिन अर्जुन हमेशा जीत जाता और विक्रम अक्सर दूसरे स्थान पर रह जाता। धीरे धीरे अर्जुन को अपनी जीत पर बहुत गर्व होने लगा। उसे लगने लगा कि उससे बेहतर कोई नहीं है। दूसरी ओर विक्रम शांत स्वभाव का था। वह हारने के बाद भी मुस्कुराकर अर्जुन को बधाई देता और फिर अगले प्रयास की तैयारी में लग जाता। एक दिन गांव में बड़ी दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित हुई। पूरे जिले से खिलाड़ी आई। अर्जुन को पूरा विश्वास था कि इस बार भी वही जीतेगा। विक्रम ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। दौड़ शुरू हुई। अर्जुन बहुत तेज भाग रहा था और सभी लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, लेकिन दौड़ के बीच में ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गया। उसके घुटने में चोट लग गई। विक्रम आगे निकल चुका था। वह चाहता तो आसानी से दौड़ से जीत सकता था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा, अर्जुन दर्द से उठने की कोशिश कर रहा था। विक्रम तुरंत वापस लौटा और अर्जुन को सहारा देकर उसने खड़ा किया। दोनों साथ साथ धीरे धीरे फिनिश लाइन तक पहुंचे। निर्णायकों ने विक्रम को विजेता घोषित किया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि विक्रम जीतने के बाद भी उतना खुश नहीं था जितना लोग सोच रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, असली जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि किसी का साथ निभाने में है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती को एहसास किया। वह हमेशा जीत को सबसे बड़ा मानता था, लेकिन उसने आज यह समझा कि इंसान की महानता उसके व्यवहार में होती है। कुछ दिनों बाद स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। इस बार अर्जुन हार गया और विक्रम जीत गया। सभी लोग सोच रहे थे कि अर्जुन बहुत दुखी होगा, लेकिन अर्जुन मंच पर गया, मुस्कुराया और विक्रम को गले लगा लिया और विक्रम से बोला, तुम जीत के सच्चे हकदार हो। यह देखकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विक्रम भी कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। उससे महसूस हुआ कि अर्जुन अब बदल चुका है। हार के बाद भी उसके चेहरे की मुस्कान ने जीत की खुशी को छोटा कर दिया था। उस दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, जीतने वाला केवल ट्रॉफी जीतता है, लेकिन हार कर भी मुस्कुराने वाला लोगों के दिल को जीत लेता है। उस दिन के बाद अर्जुन और विक्रम केवल अच्छे खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। गांव के बच्चे उनसे सीखने लगे और जीवन में जीत और हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण अच्छा व्यवहार और धैर्य और सकारात्मक सोच को अपनाने लगे।

और श्रोताओं, आइए हम बात करते हैं आज दिन विशेष की। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे विश्व निष्पक्ष खेल दिवस की। खेल मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल केवल मनोरंजन या शारीरिक व्यायाम का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, सहयोग, ईमानदारी और भाईचारे की भावना विकसित करने का भी साधन है। इन्हीं मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों को खेल भावना तथा निष्पक्षता के महत्व के प्रति जागरूक करता है। निष्पक्ष खेल का अर्थ है ईमानदारी, नियमों का पालन, विरोधी खिलाड़ियों का सम्मान और बिना किसी धोखाधड़ी के खेलना। विश्व निष्पक्ष खेल दिवस का उद्देश्य खेलों में नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना है। आज के समय में खेलों का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है और प्रतियोगिता भी बहुत अधिक बढ़ गई है। जीत की इच्छा कभी कभी खिलाड़ियों को गलत रास्ते अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जैसे डोपिंग, मैच फिक्सिंग, अनुचित व्यवहार और नियमों का उल्लंघन। ऐसे में निष्पक्ष खेल की भावना अत्यंत आवश्यक हो जाती है। यह दिवस खिलाड़ियों को याद दिलाता है कि सच्ची जीत वही है जो ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त की जाए। निष्पक्ष खेल केवल मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन का भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। खेल हमें सिखाते हैं कि जीत और हार दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई खिलाड़ी हारने के बाद भी अपने प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करता है तो वही वास्तविक खेल भावना कहलाती है। यही कारण है कि खेलों को मानवता, एकता और शांति का प्रतीक माना जाता है। आज विश्व स्तर पर कई संगठन निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तथा विभिन्न खेल संस्थाएं खिलाड़ियों को नैतिकता और ईमानदारी का संदेश देती हैं। ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में निष्पक्ष खेल की भावना को विशेष महत्व दिया जाता है। खिलाड़ियों को यह सिखाया जाता है कि खेल का उद्देश्य केवल पदक जीतना नहीं, बल्कि मानव मूल्यों को बनाए रखना है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी निष्पक्ष खेल की शिक्षा दी जाती है। बच्चों को बचपन से ही यह समझाया जाता है कि खेल में अनुशासन और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है।

यदि युवा पीढ़ी खेल भावना को अपनाएगी तो समाज में भी सकारात्मकता के साथ परिवर्तन आएगा। खेल व्यक्ति के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। विश्व निष्पक्ष खेल दिवस हमें यह संदेश देता है कि जीत से अधिक महत्वपूर्ण खेल की मर्यादा और ईमानदारी है। सच्चा खिलाड़ी वही है जो नियमों का पालन करे, अपने विरोधी का सम्मान करे और खेल को सम्मानजनक बनाए रखे। निष्पक्ष खेल समाज में भाईचारे, सहयोग और शांति की भावना को मजबूत करते हैं। विश्व निष्पक्ष खेल दिवस केवल खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है। यह दिवस हमें सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी, अनुशासन और सम्मान का पालन करना चाहिए। यदि हम खेल भावना को अपने जीवन में अपनाएं तो एक बेहतर और सकारात्मक समाज का निर्माण संभव है।

और श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी को, यानी आज हम मना रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी की जयंती। भारतीय राजनीति के एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने सरल स्वभाव, ईमानदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा से देश की सेवा की। उनकी जयंती हमें उनके जीवन, संघर्ष और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का स्मरण करने का अवसर प्रदान करती है। वे भारत के छठे राष्ट्रपति थे और अपने सादगीपूर्ण जीवन तथा निष्पक्ष कार्यशैली के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के इल्लूर गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण किसान परिवार था। बचपन से ही उनमें नेतृत्व क्षमता और देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मद्रास में प्राप्त की थी। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और कम आयु में ही देश सेवा के मार्ग पर चल पड़े। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया और जेल भी गए। देश की आजादी के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे। उनकी संगठन क्षमता और जनसेवा के कारण उन्हें अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य के विकास, शिक्षा और कृषि सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। वे किसानों की समस्याओं को भली भांति समझते थे और ग्रामीण विकास के पक्षधर थे। उनका प्रशासन सरल, पारदर्शी और जनहितकारी माना जाता था। बाद में वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। लोकसभा के रूप में उन्होंने संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। उनका कार्यकाल निष्पक्षता, अनुशासन के लिए याद किया जाता है। वे सदैव यह मानते थे कि लोकतंत्र की सफलता संसद की गरिमा और अनुशासन पर निर्भर करती है। सन 1977 में नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पूरी निष्ठा से पालन किया। उनका जीवन सादगी का उदाहरण था। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने सामान्य जीवन शैली को अपनाए रखा और वे दिखावे से दूर रहे। नीलम संजीव रेड्डी का व्यक्तित्व विनम्रता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक था। वे मानते थे कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना है। आज के समय में उनके आदर्श और विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। 1 जून 1996 को उनका निधन हो गया, लेकिन भारतीय राजनीति में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। उनकी जयंती हमें प्रेरणा देती है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता ईमानदारी, सेवा और सादगी में निहित होती है। नीलम संजीव रेड्डी भारतीय लोकतंत्र के एक आदर्श नेता है।

उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्चा जनसेवक वही है जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे। उनकी जयंती पर हमें उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं।

नीलम संजीव रेड्डी की जयंती के बाद अब हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुण्यतिथि की। साहित्य के महान विद्वान हिंदी साहित्य के निबंधकार और उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हम आज याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर। उनकी पुण्यतिथि हमें उनके महान साहित्यिक योगदान, भारतीय संस्कृति के प्रति उनके गहरे प्रेम और उनकी विद्वता को याद दिलाती है। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की और अपने लेखन के माध्यम से भारतीय परंपरा, संस्कृति तथा महान मूल्यों को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नाम गांव में हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी और अध्ययनशील थे। संस्कृत, हिंदी, इतिहास, दर्शन और भारतीय संस्कृति पर उनका अद्भुत अधिकार था। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान भारतीय ज्ञान परंपरा को गहराई से समझा और आगे चल के उसे अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया। लंबे समय तक विश्व भारती में अध्यापन कार्य किया। वहां उनका संपर्क रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तित्व से हुआ, जिसका प्रभाव उनकी चिंतन और लेखन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बाद में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध, आलोचना, उपन्यास और शोध के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में से वानभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन रचनाओं में भारतीय इतिहास, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का माध्यम न मानकर समाज और संस्कृति के विकास का साधन माना। उनके निबंध अत्यंत सरल, प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक होते थे। वे जटिल विषयों को भी सहज भाषा में प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता रखते थे। भारतीय संस्कृति, धर्म, इतिहास और साहित्य पर उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कबीर, सूरदास और नाथ संप्रदाय पर गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने समृद्ध बनाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि महान चिंतक और मानवतावादी भी थे। वे भारतीय संस्कृति की मूल भावना, सहिष्णुता, प्रेम और मानवता को अत्यंत महत्व देते थे। उनका मानना था कि साहित्य का उद्देश्य मनुष्य को बेहतर बनाना और समाज को सकारात्मक परिवर्तन लाना है। 19 मई 1989 को उनका निधन हुआ, किंतु उनका साहित्य आज भी जीवित है और नई पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। उनकी पुण्यतिथि हमें स्मरण कराती है कि महान साहित्यकार कभी समाप्त नहीं होते। उनकी रचनाएं सदैव समाज को प्रकाश देती रहती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के ऐसे महान स्तंभ थे जिनकी विद्वता, सरलता और साहित्यिक योगदान सदैव याद किया जाएगा। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संकल्प लेते हैं।

अब देते हैं आपको छोटी सी जानकारी कि शहर में आज कहाँ कहाँ रहेगी बिजली आपूर्ति बंद। शहर में आज 3 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। नवीन 33/11 केवी सब स्टेशन मेडिकल कॉलेज झालावाड़ पर स्थापित 11 केवी फीडर के इंटर कनेक्शन कार्य के कारण मंगलवार को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक विभिन्न क्षेत्रों में बिजली बाधित रहेगी, जिसमें शामिल हैं SRG हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल, डॉक्टर्स

डॉक्टर, दिव्य लक्ष्मी हॉस्पिटल, पीएसडी ऑफिस, चामुंडा माता मंदिर, कपिल वस्तु कॉलोनी, छापी कॉलोनी, महिला पुलिस थाना, अध्ययन कॉलोनी, गायत्री कॉलोनी, शांति कुंज कॉलोनी, गुड़ा गांव, एआर नगर, ड्रीम होम रेजिडेंसी, पाटीदार पेट्रोल पंप एवं हल्दी घाटी क्षेत्र।

दोस्तों, ज़िंदगी है तो सब है, कल की फिक्र में आज को ख़राब करना सबसे बड़ी मूर्खता है। आज को यदि हम हंसकर मुस्कुराकर जिएंगे तो ज़िंदगी और भी मुस्कुराएगी और ज़िंदगी और भी खुशनुमा हो जाएगी। जी हाँ श्रोताओं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए खुशी खुशी जिए, मुस्कुराकर जिए, हंसते हंसाते जिए, इसी उम्मीद के साथ अब लेते हैं हम आज के इस कार्यक्रम से विदा। कल सवेरे आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार झालावाड़।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। हम आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म मधुमती से। गीत को आवाज़ दी है मुकेश ने, शब्द रचना है शैलेंद्र की और संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने।

0: নেতা টেলিলকে অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म मेरे सनम का गीत। शब्द रचना है मजरूह की और संगीत बत्तिया है ओपी नैयर।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर और मनहर उदास, लता मंगेशकर के स्वरों में फिल्म पूरव और पश्चिम का ये गीत। शब्द रचना है इंदिवर की और संगीत बद किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। अब बचाव संभव है,
1: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
0: सही समय पर। अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
1: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क किया जा रहा है।
0: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
1: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
2: संगीत की आखिरी पेशकश फिल्म बुनियाद से सुन रहे हैं आप गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत बत किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: गीत के साथ ही लेते हैं फिल्म संगीत से विदा। हम आकाशवाणी झालावाड़ के नृत्य से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। सवेरे के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में अनुप्रसारित होगा समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
2: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
3: Recognizing the ambitious
4: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
3: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्ज

0: साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
7: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की

0: अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम प्रगति पथ। प्रगति पथ में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भेंट वार्ता।

0: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर।
1: प्रत्येक सप्ताह का एक विशेष दिन मंगलवार, जिस दिन आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र से कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, वो है प्रगति पथ। इस कार्यक्रम में हम सरकार की प्रगतिशील योजनाओं के बारे में बात करते हैं और आज हम जिस योजना पर चर्चा करेंगे वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर। और मैं आपके साथ हूँ, आपका मित्र ओम प्रकाश। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में कुछ जानकारी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2024 को की थी। इस योजना के तहत घरों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न बिजली नवीनीकरणीय ऊर्जा का एक प्रकार है, जिससे पर्यावरण में कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता है। अधिकांश लोग इसके फायदों से अनजान हैं या मानते हैं कि शुरुआती लागत अधिक होने के कारण वे इसे वहन नहीं कर सकते, जैसा कि पहले होता था। उच्च लागत की समस्या का समाधान करने और नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सौर सब्सिडी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। हमारे वित्त मंत्री के अनुसार कुल 1 करोड़ परिवारों को सब्सिडी मिलेगी और वे हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उत्पन्न कर सकेंगे। सरकार की सौर पैनल योजना के तहत ग्रिड से जुड़ने वाले सौर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी दी जाती है और पात्र घर मालिकों को नया सौर सिस्टम लगवाने के बाद सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा ये योजना सौर पैनलों के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। इस योजना की संपूर्ण जानकारी के लिए आइए आज बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम क्या है?
2: सर मेरा नाम है पवन सोनी।
3: जी आप कहाँ रहते हैं?
2: सर मैं रतलाई रहता हूँ।
3: जी जी, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?
2: सर पीएम सूर्य घर योजना जो है मुफ्त बिजली योजना, ये भारत सरकार की एक योजना है जिसके थ्रू सरकार हर एक व्यक्ति को उसके छत पे सोलर लगवाने के लिए सब्सिडी देती है।
3: जी।
2: और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का आदमी यहाँ पे मजा ले सकता है अगर वो 3 किलोवाट तक का सोलर लगाता है तो।
3: जी जी।
2: और इसमें सर सब्सिडी की अगर बात करें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सब्सिडी देती है। अभी केंद्र सरकार की सब्सिडी चल रही है 78,000 की, जो कि सभी राज्यों में लागू है। और हर राज्य की, राज्य सरकार की जो सब्सिडी है वो हर राज्य की अलग अलग सब्सिडी होती है।
3: जी।
2: अभी राजस्थान में हम रहते हैं तो राजस्थान की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 17,000 की सब्सिडी मिल रही है।
3: जी।
2: तो लगभग टोटल दोनों सब्सिडी जोड़ दी जाए तो 95,000 तक की सब्सिडी सरकार दे रही है सोलर लगाने के ऊपर।
3: तो सर ये इसमें जैसे 1 किलोवाट का अगर कोई व्यक्ति लगाना चाहता है तो उसकी सब्सिडी क्या रहेगी?
2: सर 1 किलोवाट के सिस्टम पे लगभग 30,000 रूपए की उसको सब्सिडी मिलती है।
3: जी। और 2 किलोवाट पर?
2: 60,000 रूपए की सब्सिडी मिलती है सर।
3: और 3 किलोवाट पर?
2: 78,000 रूपए तक की सब्सिडी है यहाँ पर केंद्र सरकार की।
3: जी जी।
2: लेकिन अभी हाल ही में राज्य सरकार ने भी चालू किया है, राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है।
3: जी।
2: और अभी 17,000 रूपए की राज्य सरकार भी सब्सिडी देगी लोगों को।
3: जी। तो ये अलग से रहेगी?
2: हाँ सर, जब कोई भी वेंडर के थ्रू आदमी जब सोलर का कनेक्शन लगवाता है, सोलर सिस्टम लगवाता है, तो वेंडर ही उसका पूरा प्रोसेस कर देता है।
3: जी।
2: इसमें उसको केंद्र सरकार की सब्सिडी भी दिलाता है, राज्य सरकार की सब्सिडी भी दिलाता है।
3: जी जी। इस योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं? जैसे कि
2: सर इस योजना के पात्र की अगर बात करें तो हर एक व्यक्ति इसका पात्र है जिसके भी लाइट का बिल आता है, बस उसके पास लाइट का कनेक्शन होना चाहिए। और अगर उसके लगभग 300 यूनिट तक का लाइट का बिल आ रहा है तो हर एक व्यक्ति इसको लगा सकता है। और उसका घर पक्का होना चाहिए, घर पे एक प्रॉपर छत होनी चाहिए, छत पे जगह होनी चाहिए सोलर लगाने के लिए, क्योंकि सर ये 30 साल तक इसकी वारंटी आती है सोलर पैनल्स की। तो लगभग हर एक वेंडर उसी तरीके से लगाता है कि कस्टमर को लगभग 30 साल तो कम से कम ये चले ही चले।
3: अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि इसके लिए जो जगह की जरूरत पड़ती है तो छत पे जो लगता है तो उसमें कितनी जरूरत पड़ती है अपन को?
2: सर अगर एक बात करें तो इसमें

0: लगभग पर किलोवाट 70 से 80 स्क्वायर फीट की जगह पर जगह लगती है। 70
1: जी।
0: से 80 स्क्वायर फीट लगता है 1 किलोवाट के लिए।
1: अच्छा, इसे अपन जैसे छत पे लगाते हैं तो इसमें कुछ जगह वगैरह या मतलब किस तरह लगाना जरूरी होता है कि सूरज के, ताकि उस पर किरणें उसी पर फोकस करें।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल। सोलर पैनल हमेशा दक्षिण दिशा में लगाए जाते हैं, 15 डिग्री के एंगल पर लगाए जाते हैं, और हर एक कंपनी का लगाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन लगते सारे दक्षिण दिशा में ही है। क्योंकि जब सूर्य उदय होगा पूरब से और जाएगा पश्चिम की तरफ, तो पूरे दिन की धूप उसके ऊपर गिरेगी और ज्यादा से
1: जी।
0: ज्यादा प्रोडक्शन उसको मिलेगा लाइट का।
1: यदि कोई व्यक्ति पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह कहाँ कर सकता है?
0: सर उसके लिए तो सबसे आसान प्रोसेस में अगर बताऊं तो व्यक्ति जिस भी कंपनी का, जिस भी वेंडर का सोलर लगवा रहा है, वो वेंडर खुद ही अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति खुद अप्लाई करना चाहता है तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से भी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसके अंदर वो जाके अप्लाई कर सकता है।
1: अच्छा,
0: और अगर वो इतना भी झंझट नहीं लेना चाहता है तो अपने नजदीकी बिजली घर में भी, बिजली ऑफिस में जाके भी अप्लाई करवा सकता है, वो भी कर देंगे अप्लाई।
1: आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की भी आवश्यकता होती है इसमें, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर आवेदन करना चाहता है?
0: सर दस्तावेज तो बिल्कुल नॉर्मल ही है इसमें, जैसे आधार कार्ड हो गया, बिजली बिल हो गया, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, और उपभोक्ता का जो मतलब कि लाइट का बिल हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक की डायरी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, छत की फोटो हो गई,
1: जी।
0: और
1: अब
0: बाकी।
1: पीएम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अब इसमें लाभ क्या क्या है, जैसे अगर कोई व्यक्ति इसको लगवाना चाहता है अपनी छत पर तो क्या क्या लाभ मिलेगा इससे?
0: सर उसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि उसका लाइट का बिल 0 हो जाएगा,
1: जी
0: और व्यक्ति जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मान लो कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम उसके लग रहा है 1,70,000 रुपए का, 1,80,000 रुपए का, तो
1: जी
0: 95,000 तो उसको सब्सिडी आ रही है, उसके 1 लाख के अंदर का सोलर सिस्टम पड़ेगा। अब 1 किलोवाट लगभग एक दिन में 4 से 5 यूनिट बनाता है, उसका 3 किलोवाट बनाएगा लगभग 15 से 20 यूनिट तक,
1: जी
0: तो व्यक्ति का लगभग पूरा महीने का कैलकुलेशन करें तो लगभग 300 से 400 यूनिट तक वो प्रोडक्शन कर देता है, तीन
1: जी जी
0: किलो वाट का सिस्टम। तो आदमी
1: अच्छा
0: का लाइट का बिल बिल्कुल 0 ही हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा,
1: जी।
0: और वो जितना उसने पैसा लगाया लगभग 1 लाख रुपए, वो उसके 2 से 3 साल में, 4 साल में वसूल हो जाते हैं, और उसके बाद आने वाले 25 से 30 साल वो फ्री की लाइट का आनंद लेता है।
1: जी। तो सोलर पैनल जो आपने बताया 25 से 30 साल तक, इसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, रख रखाव, जैसे कि अपन क्या रख रखाव ध्यान रख सकते हैं इन चीजों का?
0: सर रख रखाव तो बिल्कुल छोटा सा रख रखाव है, जब भी सोलर पैनल गंदे हो जाते हैं इनको पानी से धोना पड़ता है, हर 7 दिन में अगर आप इसको धोते हो तो बहुत शानदार रहेगा। क्योंकि हर 7 दिन में अगर आप इसको धोते हैं तो वो डस्ट क्लीन हो जाती है, सोलर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और अपन जो मैंने 300 से 400 यूनिट बताए हैं 3 किलोवाट के, वो इतने बन जाते हैं।
1: अच्छा, इसमें कोई खर्चा भी लगता है अपना या बस आपको नॉर्मल पानी से ही धोना है?
0: सर नॉर्मल पानी से ही धोना है, जिस पानी से अपन रोज नहाते हैं, पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं, वही पानी।
1: हाँ, ताकि वो जो भी उस पे गंदगी, जैसे धूल मिट्टी जो जगह बना लेती है, ताकि वो क्लीन हो जाए।
0: हाँ, बिल्कुल, जितना साफ सोलर पैनल रहेगा उतना ज्यादा बिजली बनाएगा।
1: अच्छा, अब इस सोलर पैनल को जो हम छत पर लगवाते हैं, इसमें बारिश के पानी से भी नुकसान है?
0: सर इससे कोई नुकसान नहीं है, वो बिल्कुल साफ पानी होता है, उससे तो सोलर पैनल भी क्लीन हो जाते हैं। हाँ
1: अच्छा, और इसे अपन, आपने जो बताया था कि इसे दक्षिण दिशा में ही लगाना जरूरी है,
0: यस सर बिल्कुल।
1: और को कितने डिग्री पर रखना जरूरी है सर इसको?
0: सर लगभग ये 15 डिग्री के एंगल पर लगते हैं। हाँ
1: अच्छा,
0: लेकिन इसमें लेंगिट्यूड लेटिट्यूड भी नापा जाता है, जहां पर भी हमको सोलर लगाना है, और उस डिग्री और उस एंगल के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से ही सोलर का इंस्टॉलेशन किया जाता है।
1: जी। अब ये सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं?
0: सर सोलर पैनल तो लगभग 4 से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन मेन बात करें तो सबसे पहले जो सोलर पैनल आया था वो पॉली सोलर पैनल आया था, पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल आया था।
1: जी
0: इसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, मोनोक्रिस्टलाइन आया, फिर मोनोक्रिस्टलाइन हाफ कट आया, फिर बायोफिशल आया।
1: जी
0: अभी
1: जी
0: जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है हमारे एरिया में वो है टॉपकॉन सोलर पैनल।
1: तो इस टॉपकॉन के क्या क्या फायदे हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति लगाना चाहता है तो उसको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं इसको लगाने से, इसमें
0: सर अगर
1: ऐसी
0: आप
1: क्या
0: टॉपकॉन
1: विशेषता
0: सोलर
1: होती
0: पैनल लगाते हो तो लगभग इसकी 30 साल की परफॉर्मेंस की वारंटी आती है,
1: जी।

0: बात है कि 550 वाट से बड़ा सोलर पैनल लगेगा। अब
1: जी
0: बड़ा सोलर पैनल रहेगा, ज्यादा वाट का रहेगा तो कम जगह में आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। पहले
1: जी
0: छोटे साइज के सोलर पैनल आते थे तो ज्यादा पैनल लगाने पड़ते और बिजली उतनी ही बनाता था। अब कम पैनल लगाने पड़ते हैं, बिजली भी उतनी ही बनाता है। कुल मिला के कम जगह में ज्यादा फायदा।
1: हाँ, वो बात सही है। अभी का जो लेटेस्ट जो वर्जन है वो यही है।
0: हाँ सर, अभी टॉपकॉन ही चल रहा है। इसके अलावा मार्केट में देखा जाए तो HDT सोलर पैनल आ चुके हैं। लगभग अभी 700 से 800 वाट तक के सोलर पैनल आ चुके हैं मार्केट में। केवल एक पैनल ही बता रहा हूँ मैं, 700-800 वाट का,
1: जी
0: और
1: जी
0: हजार हजार वाट के सोलर पैनल भी आने वाले हैं।
1: हाँ, धीरे धीरे
0: बाकी
1: ग्रोथ हो रहा है।
0: अभी लगभग देखा जाए तो 580-590 वाट के पैनल सबसे ज्यादा मार्केट में लग रहे हैं।
1: अच्छा, ये सोलर सिस्टम लगाने में अब कितना समय लगता है इंस्टॉलेशन करने में? जैसे कि अगर अपन कोई व्यक्ति लगवाना चाहता है तो उसे कितना समय लगेगा?
0: सर इसमें यूँ रहता है कि जिस दिन आपने डील डन करी है, फॉर्म भरा है, तो उसके 3 से 4 दिन में कंपनी सोलर का इंस्टॉलेशन कर देती है। लेकिन ये चालू तभी होता है जब बिजली विभाग में अपन नेट मीटर सोलर मीटर जो लगते हैं,
1: जी
0: या
1: जी
0: फिर अपना स्मार्ट मीटर लगता है, तो नेट मीटर सोलर मीटर लैब टेस्टिंग होने के बाद जब बिजली विभाग से आप वापिस आ जाते हैं, लग के चालू हो जाते हैं, तब अपना सोलर वास्तव में चालू होता है। लेकिन इंस्टॉलेशन तो कंपनी 1-2 दिन के अंदर कर देती है।
1: जी जी तो अपन जैसे कि विद्युत विभाग में जाते हैं तो वो उनकी भी प्रोसेस होती है क्या? वो भी अपने घर पे आते हैं या अपन जिनसे लगवाते हैं वही लगवाते हैं इसको,
0: सर
1: सोलर पैनल को?
0: अपन जिस भी वेंडर के थ्रू लगवाते हैं वो सारे प्रोसेस वो खुद ही कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता इसमें।
1: अच्छा,
0: लोन
1: वेंडर
0: का
1: ही करते।
0: प्रोसेस भी वही करवा देंगे, आपका बिजली विभाग का काम भी वही करवा देंगे, आपका सोलर का इंस्टॉलेशन भी वही करवा देंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको एक कील भी लेके नहीं आना है, सारा प्रोसेस वही कर देंगे।
1: अच्छा, आपने अभी जो बताया कि लोन, क्या इसमें हम जैसे कोई व्यक्ति लगवाना चाहता है तो इसमें लोन की भी प्रोसेस है?
0: हाँ सर बिल्कुल, लोन की प्रोसेस है। पीएम सूर्य घर योजना जो चल रही है, इसी के थ्रू बैंक के लोन भी दे रही है। अगर आप 2 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो 6% इंटरेस्ट लगता है,
1: जी
0: और अगर 2 लाख से अधिक का लोन लेते हैं तो 9% इंटरेस्ट लगता है, जो कि अभी तक का सबसे सस्ता लोन है। मतलब और अप्रूव भी सर जल्दी हो जाता है। और इसकी सबसे एक और खास बात यह है कि हर एक व्यक्ति को यह लोन मिल रहा है सोलर लगाने के लिए, चाहे
1: जी
0: कोई गवर्नमेंट टीचर हो या बिल्कुल गरीब आदमी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको मिल रहा है।
1: हाँ, सुविधा सभी के लिए है। जी, बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी दी सर आपने। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति पथ, FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गणगौर।

जहाँ जीत से बढ़के हो सम्मान की पहचान, जहाँ नियमा से खिले हर खेल को मैदान, जहाँ हार में भी मुस्कान हो, जीत में विनम्रता, वहीं जन्म लेवे छे सच्ची खेल भावना की श्रेष्ठता। इन भावों के साथ एक बार फिर आपके साथ छे आपकी सखी पिंकी रावल गणगौर कार्यक्रम लेर। तो स्वीकार करो हमारी ओर से घनो घनो राम राम बिना। और उम्मीद करूँ छूँ कि आप स्वस्थ होंगी, मस्त होंगे और मका कार्यक्रम बताएं ध्यान से सुन रहे होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मुँह आज हार जीत की, खेल का मैदान की, नियमा की बात क्यों कर रही छूँ। तो आपके ताई बता दूं कि आज छे बहुत ही खास दिन जिक ताई विश्व फेयर प्ले दिवस का रूप में मनावा छा। हर साल 19 मई के दिन यो दिवस मनायो जाओ छे बढ़िया। और जिके पाछे उद्देश्य यो ही छे कि खेला और जीवन में ईमानदारी, सम्मान, नियमों को पालन और खेल भावना के ताई बढ़ाओ देवा। सीधे सीधे अपन कह सका छा कि जीत से भी अधिक महत्वपूर्ण छे सही तरीका से खेलबो और जीवन के ताई जीवो। खेल का मैदान में जो खिलाड़ी पूरी मेहनत करे छे, नियमों को पालन करे छे, प्रतिद्वंदी को सम्मान करे और हार जीत दो ही के ताई समान भावना से स्वीकार करे, ई भावना के ताई फेयर प्ले क्यों जाओ जे, जो कि केवल खेला में ही न भिड़े और बल्कि स्कूल, ऑफिस, कार्यालय जो ऊंचे, व्यापार और दैनिक जीवन में भी जरूरी छे। यदि अपन ईमानदारी और निष्पक्षता के ताए अपनावा तो इसे समाज में विश्वास और भाईचारो बढ़े छे। ई तरह भिड़ा और अपन कह सका छा कि खेला में ईमानदारी, सम्मान, समानता और नैतिकता का मूल्य के ताए बढ़ावो देनो देबा को आज को जो दिन छे वो वैश्विक उत्सव छे। एथलीट, कोच और दर्शका के बीच ईमानदारी और सम्मान जशा खेल मूल्यांकताएं उजागर करे छे। साथ ही साथ बिना और आज को दिन सामाजिक सामंजस्य के ताएं बढ़ावा देबा के लेके खेल को उपयोग करे छे। नैतिकता के साथ सतत विकास करबो भी को उद्देश्य छे, जिमें समानता के ताएं बढ़ावा देव छे। यदि इन सभी बाता को ध्यान अपन सभी रखा तो आज को ये जो दिवस छे को मनावा को जो उद्देश्य छे वो पूर्ण हो सके छे। और बिना और आज का ये दिवस के बारे में जानकारी के साथ ये कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ खास आज मैं आपके लेके लेर आया छा, पर अबार मन कर रो छे कि आपके ता एक मीठो सो लोकगीत यहाँ सुनवा दा।

0: उनको भी पता चले छे अपन के साथ अपन के ताए के ये कतरा बड़ा देश प्रेमी छा। तो भिणा और या तो ही हुई आज इन महान व्यक्तित्व के बारे में। अब अगर अपन बात करा तो आज जहाँ एक महान व्यक्तित्व की जयंती छे तो साथ ही साथ एक महापुरुष की पुण्यतिथि भी छे। जी हाँ, महान साहित्यकार, हिंदी साहित्य का महान विद्वान, निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार जिनको नाम भारतीय साहित्य जगत में बहुत ही सम्मान से लियो जाओ छे। आज को दिन उनका महान साहित्यिक योगदान और भारतीय संस्कृति के प्रति उनको अतः प्रेम की याद दिलाओ छे। इनको जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश का बलिया जिला में हुए छो और ये बचपन से ही मेधावी बुद्धिमान छा बिना और हिंदी संस्कृत भाषा के प्रति इनको गहरो लगाओ छो बिना। और इनकी कलम इतिहास की धूल में वर्तमान को चेहरों खोज लेवे छी और दृष्टि जो परंपरा में भी आधुनिक मनुष्य की धड़कन सुन लेवे छी। अपन समझ सकाचा बिना और कि इनका शब्द न उपदेश छा न उपसंहार, वे तो संवाद छा। मनुष्य और समाज के बीच, अतीत और भविष्य के बीच बिना। और आज शब्दा ने दीप जलायो छे, स्मृतिया ने चुपचाप द्वार खोलिया छे, हिंदी की चेतना आज नतमस्तक छे। एक आशा ऋषि के चरणा में जिनकी लेखनी में संस्कृति ने सांस ली और मनुष्यता ने अपना होबा को अर्थ पायो। तो बिना और आशा महान व्यक्तित्व के ताई आज की पुण्यतिथि पे आपन श्रद्धापूर्ण इनके ताई नमन करा। ये कार्यक्रम में बात आपन और भी करांगा बिना और, पर लेवा एक छोटो सो विराम।
1: महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, अब बचाव संभव है।
2: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
1: सही समय पर अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
2: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क किया जा रहा है।
1: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
2: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
0: विराम के पाछे आपको फिर से कार्यक्रम में स्वागत है बढ़िया और अब कार्यक्रम में बारी छे। जी हाँ, जी को आपके ताए बेसब्री से इंतजार रहे छे। आज की जो जानकारी छे बहुत ही खास विषय पे छे बढ़िया और के पारिस्थितिक तंत्र में जो वन्य जीव हो छे उनको काय महत्व हो छे, क्योंकि देखो ये जो पर्यावरण है, ये जो या जो प्रकृति में जो बदलाव हो रहा छे, आपन सभी इसे प्रभावित छा और गर्मी को जो मौसम छे अबार इमें ये बदलाव अपन के ताई देखबा में आवे छे, तो इमें इके लेके कुण जिम्मेदार छे, काई कारण छे, इन सभी बाता पे आपने चर्चा करी छे संजू कुमार शर्मा जी से। तो भेंट वार्ता के माध्यम से आपके ताई सुनवा रहा छे बहुत ही बढ़िया जानकारी। आज गणगौर कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्री संजू कुमार शर्मा, सहायक वन संरक्षक। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर।
3: नमस्कार।
0: सर, जैसा कि आज का हमारा बातचीत का विषय है पारिस्थितिकी तंत्र में वन्य जीवों का महत्व, तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि पारिस्थितिकी तंत्र से हम क्या समझ सकते हैं?
3: जी देखिए, जैसा विषय है पारिस्थितिकी तंत्र, जो हमारे आसपास ये जो दिखाई दे रहा है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जल, वायु, मिट्टी और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव, ये सब मिलकर ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है और उसका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। जैसा कि आपको विदित है प्रकृति में कोई भी जीव अकेला नहीं है
0: जी,
3: सभी किसी ना किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये सब निर्भरता ही यही पारिस्थितिकी तंत्र है।
0: जैसा कि आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि प्रकृति में जो भी चीज निहित है, जल, वायु, पेड़ पौधे, वन, सभी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपने बताया है, इसमें वन्य जीवों का क्या महत्व है?
3: बहुत अच्छा सवाल है आपका। वन्य जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान, देखिए झालावाड़ जिले की बात करते हैं तो
0: जी,
3: वन्य जीव और वनों के

0: क्षेत्र में बहुत समृद्ध है। यहाँ विभिन्न तरह के शाकाहारी, मांसाहारी और विभिन्न तरह के पक्षी, यहाँ तक कि विभिन्न देशों से आने वाले पक्षी भी शीत ऋतु में यहाँ निवास करते हैं। तो इसके लिए जैसे शाकाहारी वन्य जीवों की हम बात करते हैं, ये सभी वनस्पतियों की वृद्धि में बहुत सहायक होते हैं। मांसाहारी वन्य जीवों की बात करते हैं तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को और जीवों की संख्या को संतुलित करने में सहयोगी है। और पक्षी, कीट, इनकी बात करते हैं, ये प्रकीर्णन यानी कि एक जगह से बीजों को ले जाकर दूसरी जगह बिखेरते हैं, जो पर्यावरण और वृक्षों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। दूसरे जानवर हैं जैसे गिद्ध, जरक है, सियार है। दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ये हमारे सफाई कर्मी भी हैं, क्योंकि आपने देखा है कि गिद्ध मरे हुए जानवरों को नष्ट करते हैं, उनको खा के अपना पेट पालते हैं और फिर साथ में इसके पर्यावरण के सफाई करने में सहयोगी। तो इस तरह से देखते हैं कि वन्य जीव चाहे शाकाहारी है या मांसाहारी या और भी कोई जानवर है, वो किसी ना किसी रूप में हमारे बीच रहकर, हमारे आसपास रहकर पर्यावरण में सहयोगी है।
1: हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण को सुंदर बनाने के साथ साथ ये उसको बैलेंस भी किए हुए हैं, संतुलित भी रखते
0: हैं।
1: जैसा कि अभी आपने बताया कि ये प्रकृति को या पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन आधुनिक समय में हम देख रहे हैं कि जो वन्य जीव हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, इसका क्या कारण आप मानते हैं?
0: वन्य जीवों के अस्तित्व की बात करते हैं तो आपने देखा होगा पुराने समय में जब हम छोटे होते थे तो आसमान में गिद्ध ऐसे ही उड़ते हुए दिखाई दे जाते
1: जी बिल्कुल।
0: आज उन्हीं गिद्धों को देखने के लिए हमें झालावाड़ के गिद्ध कराई क्षेत्र में या उजाड़ नदी और राता देवी के क्षेत्र में जाना पड़ता है, क्योंकि इसका कारण है कि दिनों दिन बढ़ता शहरीकरण और आधुनिकता के कारण वनों की कटाई हो रही है, जिससे उनके प्राकृतिक आवास हैं वो नष्ट हो रहे हैं। दूसरा, वन भूमि या अन्य जगहों पर अतिक्रमण, खनन, अवैध शिकार, ये भी मुख्य कारण है। और जिससे हम सब ग्रसित हैं, प्रदूषण, चाहे वो जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, वो भी कहीं ना कहीं वन्य जीवों की संख्या कम करने में और उनके जीवन पर संकट लाने में सहयोगी रहा है। दूसरे, बढ़ते तापमान के कारण आप दिन ब दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं वन क्षेत्रों में आग लग जाती है, उस आग के साथ जो झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, उनको नुकसान होता है, तो इससे भी वन्य जीवों के आवास नष्ट होते हैं और इसके कारण भी सबसे बड़ा वन्य जीवों को अस्तित्व में खतरे में आया है। और जब ये सब कुछ हुआ है तो वन्य जीवों के उपयुक्त भोजन की भोजन में भी कमी आई है, जिससे वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में आ रहा है।
1: बहुत सारे कारण आपने बताए हैं, लेकिन उसका प्रभाव पूरे पर्यावरण पे होगा और पर्यावरण का और हमारा आपस में गहरा संबंध है, इसलिए हम भी प्रभावित होते हैं, लेकिन कहीं हम इस चीज़ को अनदेखा करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा तो अच्छे से चल रहा है जीवन, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये जो जलवायु परिवर्तन जो है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होकर ही बढ़ रही
0: जी,
1: है
0: जी,
1: तो इन बदलावों से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और भविष्य में किन किन परेशानियों का सामना हम सभी को करना पड़ सकता है, यानी आने वाली पीढ़ी को भी?
0: देखिए, जो हमने अभी जो कारण के बारे में पहले बात की थी, इनसे हम सब पूरी तरह से ग्रसित हैं
1: जी।
0: प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उसको नकार सकते हैं या आंखें बंद कर सकते हैं, परंतु ये हम देख रहे हैं। कोरोना का जो समय आया, उस समय ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ी थी
1: जी,
0: तब लोगों को पता चला पेड़ों का महत्व, पेड़ों की आवश्यकता। तो कहने का मतलब ये है कि ये पर्यावरण का जो असंतुलन हुआ है, इससे अनियमित वर्षा हो रही है, कहीं वर्षा की बहुत कमी आई है, कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है
1: जी।
0: इसके साथ साथ ही वर्षा के दिनों की जो संख्या होती थी उसमें भी बहुत कमी आई है। तापमान देख लीजिए, अभी आपके अप्रैल में ही 44 का पारा चालू हो गया था और अभी भी आजकल देख रहे हैं 44 से 46 पारा चल रहा है। ये सब तापमान बढ़ना भी उसका एक कारण है
1: जी।
0: कहीं देखते हैं चक्रवात हैं, आंधी तूफान हैं और बाढ़ आ रही हैं, जिससे जनहानि और बहुत सारे नुकसान हमको देखने को मिल रहे हैं। कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है और बहुत तरह की प्राकृतिक आपदाएं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो बढ़ते आधुनिकीकरण से जो नुकसान हमने अपने पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचाया है, उन्हीं से वन्य जीवों को का अस्तित्व खतरे में आया है
1: जी।
0: और स्वयं हमने अपने जीवन को भी खतरे में डाल लिया है।
1: जैसे कि आपने बताया था कि पहले के समय में हमें गिद्ध आसमान में दिखाई देते थे, और भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, तो हमारे आने वाले

0: पीढ़ी तो उनको मतलब सिर्फ फोटो में ही देख पाएगी, चित्र में ही देख पाएगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो तमाम श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रकृति के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में?
1: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी बातों से आपको लगा होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य ये एक दूसरे के पूरक हैं
0: जी।
1: और यदि हम वन, जल और वन्य जीव और प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहकर इनका संरक्षण करेंगे तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा
0: जी।
1: वैसे हमारा झालावाड़ इस मामले में समृद्ध है। आप यहाँ विदेशी पक्षियों को अवलोकन कर सकते हैं, गिद्ध आज भी दिखाई दे जाते हैं, आपको ब्लैक बक है, सियार है, पैंथर है, बहुत सारे वन्य जीव आपको यहाँ आसपास दिखाई दे जाते हैं। तो इन सब का समय निकाल कर लोग अवलोकन करें और आने वाली वर्षा ऋतु में संकल्प लें कि हरियाली राजस्थान के तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम पर्यावरण में सहयोग होंगे और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील रहें
0: जी। बढ़िया और सटीक जानकारी आपने इस कार्यक्रम में दी है। उम्मीद करती हूँ हमारे श्रोता, हमारी बहनें जो इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, वो भी एक पौधा तो जरूर लगाने का संकल्प लेंगे और इस पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, अपना योगदान देंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आकाशवाणी झालावाड़ का।
2: मिण्या और अबार श्रीमान संजू कुमार शर्मा, सहायक वन संरक्षक पीड़ावा झालावाड़ से ली जानकारी आपने सुनी। उम्मीद करूँ छूँ कि आपने यह जानकारी ध्यान से सुनी होगी और वन्य जीवों के प्रति, पेड़ पौधा के प्रति, पर्यावरण के प्रति आपनी काई जिम्मेदारी छे उनके ताई अपन के ताई समझनो छे और उनके ताई निभानो भी छे। क्योंकि देखो, कार्य अपन करंगा तभी होगो, केवल आपन सोच विचार करवा से ही काम ने चाले छे। तो उम्मीद करूँ छूँ के जो आबावाळो मौसम छे बरसात को, इमें आप जैसे कि आपन तो खेती बाड़ी से भी जुड़े हुआ छा, तो खेता के जो मेड़ा ऊँचे वहाँ भी लगा सको छो। घर में अगर गुंजाइश दिखे आपन के ताएं तो घर में भी अपन हरू भरू राखा, मतलब ऐसा पेड़ जो हवादार हो चे, ऑक्सीजन उनसे अच्छी मिले चे, तो ऐसा पेड़ पौधा अपन लगावा और ऐसा कोई काम नहीं करा जिसे पर्यावरण के प्रति जो छे पर्यावरण के ताई नुकसान हो है। खे बागो मतलब जैसे हरे भरे पेड़ान की कटाई न करवावा, इनके साथ ही पर्यावरण प्रदूषित होबा वाला जो भी कारण छा वह अपन न बना। आर बिना और अब बारी छे देखो कार्यक्रम में, आप जानो ही छो के हर बार माँ कोई ना कोई महत्वपूर्ण योजना आपके लेके ले रहा छा। तो आज की जो योजना छे जिके बारे में माँ आपसे बात कर रहा छा, वह छे एकल नारी पेंशन योजना। तो यह जो योजना छे मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, यह सरकार द्वारा ई लेके ही शुरू की गई ताकि जो महिला छे वह सशक्त बन सके छे और वह मजबूत रहे आर्थिक रूप से, उनके ताई कोई को सहारो नहीं लेना पड़े। अब जैसे कि नाम से पता चल रही है एकल नारी, तो नारी अकेली होगी तो अकेले के मतलब पात्रता की अगर अपन बात करा तो कौन कौन पात्र होगा? देखो तो जो कोई विधवा महिला हो चे, परित्यक्ता महिला हो चे, तलाकशुदा महिला हो चे, वह ई पेंशन के लेके पात्र मानी जाओगी। और वह राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, उनकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। साथ ही उनकी जो वार्षिक आय छे, इनकम छे, वह 48,000 रुपया से कम होवे तो वे ही महिला इमें पात्र हो चे। अब कागजात की बात करा, देखो बिना और के कागज़ तो भले अपन किसी भी सरकारी योजना में फार्म डाला तो मैं अपन के ताएं जरूरी कागज़ तो छाई जाए सही। तो ये जो पात्र महिला छे जो भी इनके लेके, उनके लेके जो कागज़ छाई जे वे छे सबसे पहली महत्वपूर्ण जो दस्तावेज आज का समय में छे वो आधार कार्ड। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण मतलब वह बैंक की डायरी जी में ही तो पेंशन आवे ना, तो इनके साथ ही आय प्रमाण पत्र जिसे आपकी इनकम को पता चला कि आपकी इनकम कतरी छे। साथ ही विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु को जो प्रमाण पत्र हो चे वो, अगर कोई तलाकशुदा छे तो महिला पेंशन के लेके उनके ताई

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। हम आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। सवेरे के 9 बजने को हैं। कुछ ही देर में अनुप्रसारित होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत

0: हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। इससे पहले श्री मोदी ने कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्राउन प्रिंस हॉकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद निवेश में हुई बढ़ोतरी की सराहना की।
1: रिसर्च एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, AI, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। 2 दिन की ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में रुकावट के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: राजस्थान देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनने के बाद अब राजस्थान नमो भारत नेटवर्क से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रस्तावित दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर नई दिल्ली के सराय कालेखां से शुरू होकर गुरुग्राम होते हुए खैरथल, अलवर, नीमराना, बहरोड और सोतानाला तक पहुंचेगा। परियोजना के तहत कुल 196 किलोमीटर लंबा नेटवर्क विकसित किया जाएगा जिसमें 22 मुख्य स्टेशन प्रस्तावित है। राज्य में ये कॉरिडोर 91 किलोमीटर लंबा होगा और 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। RRTS ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी जिससे दिल्ली NCR राजस्थान के बीच आवागमन तेज होगा। राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिमी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह की ओर से गठित 6 सदस्यीय विशेष समिति कल कोटा पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का दौरा कर लूनी रिच्छा स्टेशन पर खड़े प्रभावित कोच का निरीक्षण किया और अग्निकांड से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी ली। गौरतलब है कि ट्रेन के AC कोच में लगी आग की घटना के बाद रेल कर्मियों की तत्परता और आपातकालीन प्रबंधन से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। राजस्थान पुलिस की ओर से प्रदेश भर में 2 दिन का मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। इसके तहत कुल 810

नाकाबंदी पॉइंट्स लगाकर 47,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई। वहीं 274 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान बीकानेर, जोधपुर और जयपुर रेंज के सभी प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की गई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही तस्करों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर मामले दर्ज किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे

0: गिरफ्तार कर मामले दर्ज किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। समूचा राज्य भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पश्चिमी गर्म हवाओं के असर से पारे में उछाल आया है। लू के थपेड़ों के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। झुलसाती धूप को देखते हुए लोग दिन के समय घरों से निकलने में बच रहे हैं और सड़कों पर आवाजाही कम देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल दो शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज हुआ, वहीं 10 स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ और पिलानी सबसे गर्म रहे। वहीं जालौर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर मापा गया। आज सरहदी जिलों और दक्षिणी पूर्वी भागों में हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट बताया है। इन जिलों में दिन का पारा 42 से 47 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से चिन्हित ग्राम पंचायतों में जनजाति गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संतृप्ति कैंप आयोजित हो रही हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल इस संबंध में 17 विभागों की बैठक ली। इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने शिविरों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उधर जनजाति जिले डूंगरपुर में जिला कलेक्टर देशल दान ने अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
1: जिला कलेक्टर देशल दान ने सभी विभागों को दायित्व सौंपते हुए इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहे। अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की ओर से 25 तरह के कार्य किए जाएंगे। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
0: राज्य सरकार ने विभिन्न खेलों के पदक विजेता युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नीति को मजबूती से लागू किया है। इसके तहत अब तक 186 खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। इनमें क्रिकेट, शूटिंग, घुड़सवारी और कबड्डी सहित कई खेल शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले 1786 खिलाड़ियों को लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
3: खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।

एक था टाइगर, इस फिल्म से आपने अभी ये गीत सुना, तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जुजुलोक में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी इस फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत है, धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जब तक है जान फिल्म से श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का गाया गीत। गुलजार ने इस गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत समीर के बोल साजिद वाजिद का संगीत।

राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत आपने सुना। समीर के बोल थे साजिद वाजिद का संगीत और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, आपको बता दें कि 9:30 पर सुबह यानी अब से कुछ ही देर में और पुनः रात को 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। कार्यक्रम सुनना नहीं भूलिएगा आज के फनकार। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: साल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

दिल्ली में एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुंचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था। वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक, अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज

को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों

0: थमार ने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
0: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूँगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे, तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिंस की, विटामिंस को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो, तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो, पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊँगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा

0: फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छोटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ।
1: जी
0: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
0: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स में बता रही थी, ये वो चीज़ें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीज़ें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
1: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं। ये जो प्रोटीन है, इस ये बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फ़ायदे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हम कॉम्बिनेशन में, जैसे बताए, दो चीज़ें साथ में ले ले, तो ये कम्प्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
1: अच्छा,
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं।
1: वाह,
0: तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने ज़माने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है, और हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेज, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पहला अगर मैं देखूँ तो दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है, और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य हैं, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊँ तो वो उतने ही अच्छे हैं जितना मेरा दूध अच्छा है।
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल।
1: जी,
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे। जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है। ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं। भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है,
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है, ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है, तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज़ कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है।
1: शरीर इसका अवशोषण कर

0: सिमिलरिटी है।
1: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है
0: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
1: हम नहीं बदलेंगे गोलमाल अगेन से।
0: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो ज़रूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीज़ें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदें मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का ज़माना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या

0: फैट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम वो चीज़ घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
1: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
0: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं,
1: अच्छा,
0: तो कच्चे हैं तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फ़ायदे तो होते हैं, प्रोटीन ज़रूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है कई बार, ये मिथ है या सच है, कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
0: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
1: वो कौन सी हैं?
0: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
1: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
0: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेज बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज़ परहेज नहीं करनी है,
1: प्रोटीन ले सकते हैं?
0: बिल्कुल ले सकते हैं, और ज़रूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना ज़रूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा।
1: जी,
0: उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं
1: एक
0: कि
1: मिथ होता है,
0: बीज
1: बैंगन
0: वाले,
1: बंद कर दीजिए,
0: हाँ बीज
1: टमाटर
0: वाली
1: बंद कर
0: चीज़ें,
1: दीजिए।
0: बीज वाली चीज़ें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
1: जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए,
0: ये वादा रहा, इस मूवी से ये वादा रहा
1: टाइटल
0: टाइटल
1: सॉन्ग
0: सॉन्ग।
1: सुनना है आपको।
0: जी बिल्कुल,
1: हाँ, ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
0: राइट।
1: हम सुनवा रहे हैं

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो,
0: अच्छा।
1: वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि
0: पचा
1: इतना
0: नहीं
1: सारा
0: पाएगा।
1: पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो वो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज़्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
0: ओहो, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज़। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो शक पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज़्यादा आसानी से यूज़ कर पाएगा, शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज़ करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीज़ें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीज़ों की एक साथ ज़रूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी। तो इसका मतलब ये है प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज़ ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहाँ पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की ज़रूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
1: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूँगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो

0: कर लो शाम को चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
1: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में है, इसका डिटेल बताइए आप।
0: ज़्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है। तो
1: जी
0: जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है,
1: जी
0: अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज़ या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है।
1: सीरम क्रिएटिनिन।
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है। ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाई ढंग से ले लिया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार हैं कि हम खाना ज़्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है।
1: जैसे
0: जैसे
1: दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
0: बिल्कुल दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से, आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी, भाई बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार
0: प्यार
1: हो
0: हो जाए।
1: जाए, बहुत ही
0: यस।
1: अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व। और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए ज़रूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्यूबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ये विटामिन्स के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना ज़रूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज़ के रोज़ लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी ज़रूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए और इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो, अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वॉक में रहते हैं पैटर्न में, एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये ज़रूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट ज़रूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
1: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक

0: चीज से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है
1: जैसे
0: जैसे फल हो गए, जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है, क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीज़न है प्रोटीन खाने का, वो रीज़न नहीं हो पाता है कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है।
1: जैसे ऑरेंज है,
0: जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है। मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियाँ लूँ तो जितनी कलरफुल सब्जियाँ ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज़्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज़्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज़्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे, उतने अलग अलग विटामिन्स आप
1: ग्रहण कर रहे हैं। बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल मूवी से
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन्स है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आँखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या धुंधलापन
1: वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेज है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी जी।
1: दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
0: इसका क्या काम होता है?
1: ये ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत, और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीज़न है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शन्स आ सकते हैं, क्योंकि स्किन त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे।
0: जी।
1: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज़्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो। तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है।
0: जी।
1: ये मेजर सोर्सेस है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं बट ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है।
0: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
1: जी। और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है। तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीज़ों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
0: है,
1: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज़ देखी जाए तो मिर्ची,

0: ओहो,
1: मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। तो ये चीजें है हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
0: जी जी और देखिए, आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियाँ होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
1: जी ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या ना दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
0: अच्छा,
1: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे हैं या हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीज़न से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज़ नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज़ रोटेशन पर रखो, हर फ्रूट्स हर सब्ज़ी रोटेशन पे रखो, जितना आप उसे अलग अलग चीज़ें खाएंगे अलग अलग समय पे उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
0: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए,
1: इश्क बुलावा हंसी तो फंसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज़ की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीज़ों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज़ अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीज़ें क्या है? पहला है आपका अनाज। तो आप चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो, ठीक है। कड़धान्य, जैसे मैंने बताया, वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है।
0: कठोर
1: तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तीसरा है आपकी सब्जियाँ,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है।
1: तो सब्जियाँ होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, पर ये ज़रूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है, जो आपके खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीज़ें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं हैं, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फ़ायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ। और इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है पानी, जिसे हम ज़्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज़्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है, जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीज़ें, पांचों चीज़ें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न ज़माना है, पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज का ज़माना है, तो वो पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाएं इस चीज़ के पीछे।
0: कितनी हमें आवश्यकता है।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही है तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं, जो हमारे खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतने ही खाएंगे। तो ये हमें ज़्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज़्यादा ज़रूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ़ है, डायबिटीज़, उनके लिए ये चीज़ बहुत काम करती है। उनके लिए भी ये चीज़ बहुत काम की है जिनको वज़न कम करना है,
0: जी
1: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत ज़रूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी ज़रूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना, बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो
0: अच्छा।
1: कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड, एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है। तो जो एसिड्स है स्टमक के, वो उनको डिफ़िकल्ट बना देता है कि वो चीज़ें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजॉल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज़्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए, या खाने से पहले ले लीजिए। तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाड करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम

0: ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं, वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
1: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं हैं। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की ज़रूरत है, पर अगर आप ठीक हो
0: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है।
1: तो मिलना ज़रूरी है, एक बार मिलना ज़रूरी है। आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफ़ी बार हम चीज़ें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फ़ायदा कर रहा है, या ये चीज़ें हम अवॉइड कर दे रहे। जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है, ये कंसिडर करके। बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
0: या
1: उसमें
0: फिर वो बिना मलाई का दूध है।
1: अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज़ के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप वो समझ लें फिर आप खुद से चीज़ें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है। वो इंटरनेट से पढ़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज़ का नॉलेज है, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है।
0: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
1: बिल्कुल नहीं,
0: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती है।
1: उनकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीज़ें चेंज हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका। हर एक इंसान अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग है, वो एक चीज़ पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीज़ें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज़ खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज़ खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज़ दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इम्पोर्टेंस होता
0: जैसे
1: है।
0: गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
1: आम गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डायटिशियन की सलाह लगेगी ही,
0: जी
1: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है गर्मी में, अभी वाटरमेलन की भी सीज़न है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीज़न चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीज़न को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीज़न छोड़ के अगर ठंडी की सीज़न में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज़ करूँगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में, जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज़ तो कम से कम रखनी है। एक से ज़्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी ज़रूरत पूरी होगी, तब तक हमारी ज़रूरत नहीं पूरी होने वाली है।
0: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की ज़रूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीज़ें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले, ये भी ज़रूरी है। आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज़ कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज़ का, कि 4 घंटे से ज़्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीज़न है, हम पानी को बहुत

0: इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज़्यादा ना हो, बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीज़ें, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें चाहिए, वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ ख़त्म कर ली, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया आज के इस कार्यक्रम में। हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे ये गीत दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज़ में फैज़ अनवर के बोलों के साथ साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम रंग तरंग में, जो कि है पल के की आवाज़ में। महबूब के बोल हैं और के का ही संगीत है और लिया गया है पल एल्बम से।

0: हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज़ में असलम के बोल और लकी अली के संगीत के साथ ये सुमधुर सा गीत कार्यक्रम रंग तरंग में। चलिए चलते हैं, सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

हम सुन रहे थे ब्रीदलेस, शंकर महादेवन की आवाज़ में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को जावेद अख्तर ने इसे अपने बोल दिए हैं। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो नुमाइश एल्बम से है, पंकज उदास ने गाया और संगीतबद्ध किया है, ज़फ़र गोरखपुरी ने इसे बोल दिए हैं।

हम सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाज़ों में संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है आंखों में तेरा ही चेहरा। आर्यन इस एल्बम से लिया गया है, जय वालिया ने इसे गाया है, जय वालिया ने ही इसे लिखा है और ललित ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और

0: उच्च दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं यूफोरिया एल्बम से यह गीत जिसे गाया है पलाश सेन ने।

मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम से हम सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में ललित सेन के द्वारा लिखे गए और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया, परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
3: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
3: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
3: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
3: और जहां हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार

0: लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है।
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं,
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है,
0: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओ, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
0: जी,
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
0: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है,
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
0: जी,
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
0: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो,
0: जी,
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था, और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।

0: वीआरएस नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
5: गुब्बारे, गुब्बारे,
3: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
7: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
0: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।

0: प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओ, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: नहीं लगी।
3: अरे नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
5: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बढ़िया ही रोकने वाली।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थीं।

0: गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो भी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं करने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरमा,
2: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
6: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
2: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
7: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
2: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
2: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
7: हाँ गौरमा,
4: हाँ,
7: सब तैयार हैं।
4: नहीं कटने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27

0: कुंवरियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
1: ये है जंगल के उपकार,
2: मिट्टी पानी और बयान,
1: मिट्टी पानी और बयान,
2: जिंदा रहने के आधार।
3: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
4: अरे
1: ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
5: सुनो, आगे बढ़ो।
4: अरे कहां से आ
5: रहे हो? इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। उठो शुरू,
4: पेड़ों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
6: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
5: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जातीं। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
3: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
5: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
3: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
3: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती है। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम

समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

कभी धूप कभी छांव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: हरिश्चंद्र तारामती इस फिल्म से सुन रहे थे हम इस गीत को हेमंत कुमार की आवाज़ में प्रदीप के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक और रचना जो कवि प्रदीप की कलम से निकली है। और ये खूबसूरत सी रचना को आवाज दी है कवि प्रदीप ने ही, वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है और फिल्म है दो बहाने।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार आशा भोसले की आवाज़ में। हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से। प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से। प्रदीप की आवाज़, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत।

स्कूल मास्टर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में, प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रदीप के बोल है, हेमंत कुमार का है संगीत।

देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। कुछ ही देर में अनुप्रसारित होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा में आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के दौरे को लेकर प्रवासी भारतीय के साथ स्थानीय इटालियन कारोबारियों में उत्साह है। वे भारत में व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक ली। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान राजस्थान को कोयले की निर्बाध आपूर्ति, तकनीक आधारित खनन और खनिजों के बेहतर दोहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कल राजसमंद जिले के राजपुरा दरीबा में हिंदुस्तान जिंक संयंत्र का जायजा लिया। उन्होंने राजस्थान में प्रौद्योगिकी आधारित भूमिगत खनन, एकीकृत धातु गलाने की प्रक्रियाओं और सामुदायिक विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिंक का परिचालन विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। 11 लाख टन से अधिक परिष्कृत उत्पादन क्षमता के साथ ये संयंत्र आत्मनिर्भर औद्योगिक इकोसिस्टम का उदाहरण पेश करता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। इधर राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108.94 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है, वहीं डीजल 94.17 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बढ़ी हुई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई। ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने

0: पहले के आदेश में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के निर्देश दिए। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने, रेबीज रोधी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रेबीज से संक्रमित या खतरनाक कुत्तों की इच्छा मृत्यु सहित कानूनी रूप से अनुमत उपाय करने के भी निर्देश दिए। जयपुर विकास प्राधिकरण ने पारदर्शिता की पहल को आगे बढ़ाते हुए भूमि आवंटन का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि साल 2014 से 2026 तक जमीन के बदले जमीन से संबंधित मामलों में आवंटित भूमि का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस जानकारी में संबंधित जोन, योजना का नाम, भूखंड संख्या और आकार सहित अन्य जरूरी ब्यौरा शामिल किया गया है, जिससे आम लोगों और संबंधित पक्ष को किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहे और आसानी से समुचित जानकारी मिल सके। ये पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम मानी जा रही है। प्रदेश में ईंधन बचत मुहिम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले की चिड़ावा नगर पालिका में अनुकरणीय पहल देखने को मिल रही है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सहित सभी कार्मिक साइकिल से दफ्तर पहुंचकर ईंधन बचत का संदेश दे रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट से होगा। ये मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स मुकाबले से बाहर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र। आइए एक बार फिर से चलते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमों की ओर हमारे मुंबई केंद्र पर।
2: रहता है जन्म के अंत की बुनियाद को साथ लिए है। हम सभी मिट्टी से बने हैं, बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र उठते रोते मुस्कुराते नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलतियों से सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जो करियर रिश्तों और जिम्मेदारी के बोझ को ढोती हुई 40 के पार होती है। और इस दौर में बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े, लेकिन हम इन दो पीढ़ी के बीच का पुल बन जाते हैं। फिर आई 60 के बाद की पारी, जिसमें खुद को समेटने का वक्त शुरू होता है। शरीर धीमा पर समझ बिल्कुल सा, पूरे जीवन की यादों को एक साथ खूबसूरत सहज और अंत की कामना करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है और हम आपको सौंपना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत। बस एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो जीवन है, इस जीवन को लेकर आपकी अवधारणाएं क्या हैं? यानी जीवन कितना सत्य है आपके लिए? ये बात आप सब बहुत अच्छे से हमें यहाँ बता रहे हैं और ये बताते बताते बस इतना बता दीजिए कि ये वाला जो गीत है जो हम आपको सौंप रहे हैं, ये कौन सी फिल्म का है? बस इतना बताइए और जल्दी से सुन लीजिए ये गीत।

जीवन के सफर में राही, लता मंगेशकर की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी की बोल, एस डी वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्म मुनीम जी से है, आवाज़ लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म। और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटकेलियाँ, मस्तियाँ और बहुत सारी शैतानियाँ। और उन शैतानियों के बीच में हमें याद नहीं होता कि हम किसके साथ वो मस्ती कर रहे हैं या वो खेल खेल रहे हैं। हम बड़ा छोटा कद में, रंग में, रूप में, यौवन में, किसी भी चीज़ को हम नहीं देखते हैं। हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है वो बस हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है। तो चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ, जो छोटा सा बचपन है उसके। पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन, जवानी और वानप्रस्थ, यही जिंदगी के तीन पड़ाव हैं जब हम अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन खेलकूद, नादानियाँ, शैतानियाँ और फिर उसके साथ किताबों की दुनिया, दुनियादारी और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम के बीच यह रिश्ता ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्ञान और पढ़ाई उनकी एकमात्र दुनिया होती है, और लेकिन उम्र के साथ, दोस्तों के साथ, करियर, जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नजरिया लेकर आते हैं। यही एक ठहराव है, परिवार के रूप में होती है, जहाँ हंसी, खुशी, सुकून, शांति दूरियों का संजोग बन जाता है। और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है जिंदगी, और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। तो जन्म से लेकर, हमारे कौश होता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ रहता है, अब वो सब बचपन फूलों सी हंसी, संगी, साथी, सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। बाली उम्र में किसी से नैना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है, और जो इसका सामना कर सके वही आगे बढ़ गया, वही सच्चा इंसान है। अपने तो अपने होते हैं। और बहुत सारे गीतों के नाम आपने लिखे जो हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे श्रोता एक और लिखते हैं, जीवन का कालचक्र का सुंदर वर्णात्मक झांकी प्रस्तुत की गई है। शैशव काल की मुस्कान, किलकारियों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल काल से नव यौवन का जब दस्तक देता है तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। ना अति परिपक्वता, ना ही बचपना, ना ही यह मोड़ आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है। यह फिर युवा काल, विवाह से गृहस्थाश्रम की ओर कदम पड़ते हैं। आज कि एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्णता, तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया, तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहाँ शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था की सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत। वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफर को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, स्मृतियों के झरोकों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं, मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है, ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है, जहां बीता हुआ कल

हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले, यानी मैं भी छोटी सी थी, उस समय आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई। जल्दी से बताइएगा, उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन में आपने बहुत शरारतें की हैं, बहुत मस्तियां की हैं, लेकिन अपने जीवन को खुल के जिया है। आइए सुनते हैं ये गीत।

मिली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश के बोल और सचिन देव बर्मन की आवाज बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीज़ों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारी श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा रे, ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी गलती कर दी थी तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो उस पहले समझा, मैं याद कर रहा हूँ, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। वैसे हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी ज़ोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत ज़ोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ़ भी आपको हो गई होगी। ऐसे काम करने नहीं चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी। अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था। सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहाँ पे पतंग लेने ना गया हूँ। सच में वो क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खोखो, धूम खेले हैं। क्या बात है, बचपन की यादें ताज़ा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे। क्या बात है। हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज़ सुन सकती हैं और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है। सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था। वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे। उसके सिर पर झूले की कील लग गई और बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई और शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज़्यादा बिगड़ गई घर आने पर। बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर 7 टांके आए। बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियाँ की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के 1.5 पहिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियाँ हैं और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।

बच्चे मन के सच्चे ये गीत हम सुन रहे थे दो कलियां फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो, तो ज़रूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियाँ तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे, पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियाँ मार पड़ेगी इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नज़दीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब एक घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो मुझे देख लिया, पास आकर बोली तू स्कूल नहीं गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थीं जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें

पूछते हुए आती थी उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे। दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ जाता और जो कुटाई पड़ती थी, आहा क्या मज़ा आता था। तो ये बात तो बड़े मज़ेदार होते हैं। और कहते हैं कि माँ का माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं। बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है, स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले ज़माने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक़ था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपए निकाले थे और पतंगी डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे। और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, वो मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत मार पड़ती थी। कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर 1 साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुँच गई, बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है, मैं नीचे उतरा। माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी कौशलता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था। पड़ोस की गुलाटी अंकल के आते में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अधपके होकर दिखाई दे रहे थे। खाने से मतलब नहीं था, अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे। अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच, हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया। कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियाँ हुई। जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला। भैया को ज़्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहाँ पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए अपनी शरारतें और शाबाशियाँ बचपन की ज़रूर लिखते जाइए। ये एक गीत और उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े बहुत विशाल बन जाते हैं।

अमर प्रेम फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल आर डी वर्मन के संगीत के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है, एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है, जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है, जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियाँ खोजने में, किसी की फूलों जैसी हंसी, किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है, इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। इतनी अच्छी बात लिखी है, बचपन कली जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है, इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भुगता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं, हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे 2-3 साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहाँ पर इमली और आम के पेड़ थे, उन पर पत्थर मारते थे और फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहाँ रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता

लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की, बागों से आम अमरूद इमली ये सब तोड़कर खाना अंबाती, हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी हैं, क्रिकेट बहुत खेले हैं। अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में, वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत, आर डी बर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे टीवीएस चलाई, लेकिन मेरे दो छोटे भाई बहन उनने भी ट्राई किया, गाड़ी रेस होती थी, ज़्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया, बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सबने बाद में भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत जरूर याद है और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहाँ 20 किराएदार थे, उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब बारूद सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था, सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो, हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे जिससे पूरे बारे में मिर्ची की गंध भर दुर्गंध भर जाती थी, वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम कहाँ मानते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे, तब मम्मी मारती नहीं थी। कोई बात नहीं, हमारी श्रोता जो है कह रही हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश है कि उनके गीत को लिया गया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदरकांड गाया था हारमोनियम बजाकर, हमें वो दिन याद आ रहा है, और ₹50 मिले थे पुरस्कार के रूप में, 11 दिन थे और ₹50 बहुत बड़ी चीज़ होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे, और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी, हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है, जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अट्ठास लिए हुए यौवन, और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौढ़ावस्था, इस उम्र तक आते आते यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हम उम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में, सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है, स्कूल के दिनों में गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नक्सीर फूट जाती थी, एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गईं, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा, ऐसे होते हैं, हम दो सहेलियों ने मिलकर उसे ज़मीन पर लिटाया, उसकी नाक पोंछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया, और स्कूल की टीचर को भी बता दिया, और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारी श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारी कौशलता लिखती है कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुनी रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे, और सबसे सब किसे कहते थे, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, हाँ, और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों दोस्त रस्सी को ऊपर कर देते थे, राह गिर गिर जाते थे, इस चक्कर में कई बार मार भी पड़े, ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता 7वीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में, हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी, बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे, फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया, बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस और जो एक अलग दौर है, वो दौर में आपने विषय पढ़े हैं, उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए, ये गीत में आवाज किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज़ किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज़ है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं, स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीज़न से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है, और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स, मैथ्स, रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं, हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो, किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रही हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 16 बरस को ही बाली उम्र

0: हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है। इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुँचते पहुँचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं, और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: चिक चिक बम बम बम चिक चिक बम।

ये सफर बहुत अच्छा बीता, आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ, सुरीला सफर में, सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

0: end to the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend third India-Nordic summit in Oslo aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson in a joint newspaper article stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी

0: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया।

0: आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझकर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @SIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
2: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
3: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर

0: 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगरी में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
5: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
6: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।

0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो, इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर जो कि है हमराही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ, आप सबका कल्याण हो, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
2: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
1: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
2: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल है ना। और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है हमें जान रहा है
2: ख्याल रखने वाला जी। है ना। विषय बता दे।
1: चलिए
2: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
1: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना वो हमें नहीं डांटते थे वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
2: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे है ना?
1: आंखों से डर जाते थे।
2: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी की आंखों के तारे होते हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
1: क्या बात है।

0: और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं,
1: है ना? सचमुच
0: जगमगाते हुए
1: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
0: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव, सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
1: और
0: हम
1: उसको कचोटते रहता है,
0: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना, ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, कहीं हम वो अटक के न रह जाएं। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है, लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
1: अगर कि
0: बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए। और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए, तब तक ये गीत सुनिए।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो भाई, हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है, अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो ज़रूर पहुँचे इस कार्यक्रम में। सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल, स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते, तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली, उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक गाँव है रोपरखेड़ा, वहाँ हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था। और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियाँ उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
2: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है, और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
2: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है, बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है।
2: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल, और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक

0: जो
1: योग्यता है।
0: योग्यता है उसकी भी जरूरत एक एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
1: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता, है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे।
1: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हाँ हाँ हाँ क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल, और देखो ना
1: ये गाने जब... भी हमारे आँख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा, कभी कभी ऐसा था ना हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों के
0: मुंह से। बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा। देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही।
0: हाँ।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहाँ तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आँख का तारा कहते हैं, और हर माँ की आँख का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारियों की आँख का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात,
0: क्या
1: है?
0: बात है,
1: हमारा देश हम सभी की आँखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और संदेश आया है, आँखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आँखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है, इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है, छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना अपनी माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ की आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद कितनी मिलती है ना।

0: सोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं, माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं
1: और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया और

0: अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे माँ तो हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करो, ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
1: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त। और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम जैसे कि पछतावा होने लगता है।
0: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में हाँ, तब तो और भी बुरा लगता है ना?
1: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा, जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुँचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपना कर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियाँ हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा, और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखिए आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्मक्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी गलतियाँ हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े, और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ

0: से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे, तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताएं। एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
1: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
0: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और संदेश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है, तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सुना ली। मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज़ स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। ज़िंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहाँ पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: पर ऐसा होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मेरे अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई, अगली बार आप मेहनत करके हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना, तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम। उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है, लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो, मम्मी तो यहाँ भी काम आई
1: का तारा होते ना बच्चे,
0: इसीलिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार। हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना यह हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था। पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूं। क्या बात है।
0: और एक हमारे साथी ने भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी, हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में, यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए, ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। मैं अपने जमाने में उर्दू,

0: अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। बीए तक यह सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा। शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर दो नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया है ना।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी मार डांट, तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता। मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है। परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं। परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं। और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
0: और तो अब गाना सुन ले
1: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सुन लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये। नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा, तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम, उपहार या डांट, मुझे तो याद नहीं हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश करते थे कि अगले साल नए क्लास में ही जाएं।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है, परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए हैं, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं हैं। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के
0: चलो।

0: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
1: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
0: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थामकर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है कि वो
2: आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
1: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई?
2: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी, जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूज़िक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई, तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो। ज़बरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती, और वहाँ से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
1: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से,
2: जी,
1: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में मिली।
2: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
1: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जा करके शुरू हुआ। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए, तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और

0: अच्छाइयां आ जाती हैं। तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
1: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आए में एक किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक कहते ना गाड़ियों की और लोगों की उस ज़माने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
0: अच्छा,
1: और लता जी भी वहाँ थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भाई आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहाँ से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई और वहाँ आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहाँ।
0: वाह वाह वाह भाई, ऐसा
1: कहां है से कहां ये बात देखिए
0: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ। लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
1: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
0: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
1: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहां, हम तो खे

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊँ, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहाँ, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बंधाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं।
1: जी अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं,
1: जी
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है। समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत
0: इंस्टेंट फूड की तरह
1: बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था।
0: जी हाँ, इतना पेशेंस रखते थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सके।
1: और जो इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन वो लेवल पे, रिहर्सल हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी जी।
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है।
1: जी, कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी। जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
0: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
1: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ भाई। कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: कैसे
0: गाना
1: मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्या हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गए थे, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाक्या सुनाती हूँ। मैंने कहा देख मुझे मंडे जाना है अपना अहमदाबाद में, एक कॉलेज का फंक्शन है, तो कहती है तेरे साथ कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूँ? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगे नहीं चलते, मज़ा आएगा, मैं कोकिला बन बहन बन के आऊँगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं, अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मज़ेदार, और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो मत तुम। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देखे बोले आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है, बड़ा मजा आया। लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
0: और आपकी ये दोस्ती
1: अभी भी कायम है? अच्छा। जी हाँ।
0: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके
1: बिल्कुल बिल्कुल वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं, मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
0: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती
1: है जी,
0: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
1: जी, मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
0: अच्छा
1: जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियों छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग

0: कॉइन फेंकते थे, इसे इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है, आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा वैसे बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा लगा
1: और बहुत, देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में
0: रस
1: हमेशा भूलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है, एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप इस बारे में क्या कहेंगी?
0: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है, और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती थी?
0: शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में, तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक ख़ास रियाज चाहिए, तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी, और इन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का, गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूज़िक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में, जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे, और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा, कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, और मैंने ड्यूट्स ज़्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया, और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस ज़माने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस किस्म की चीज़ हुआ करती थी। तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गए हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला, वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारस मनी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते हैं ना, टॉप पे रहा काफ़ी दिनों तक, और यहीं नहीं, जहाँ भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफ़ी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है, उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूज़िक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद
0: करते
1: में रेडियो
0: थे,
1: पे सुनते थे।
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के ज़रिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं सैगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को, बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम, कहते हैं ना, रेडियो के ज़रिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई

0: गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई. नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था. और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. मेरी ज़िंदगी में शायद गायिका बनना था, और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया. मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला.
0: पछतावा तो नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं.
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे आप?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी.
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुके हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती. ज़रूर, मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है. मेरी ज़िंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई. मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं. पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं, और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है. और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध.
0: वाह, तो कैसा काम चल रहा है ये?
1: अच्छा चल रहा है, अभी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है.
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है, और ये एकदम अलग इस फील्ड में मजा रहा है?
1: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना, वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारो, जिन्होंने डॉन बनाई थी. और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी, आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं. अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है. कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मज़ेदार कहानी है. जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है. और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है. राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे. और ये गाना अभी लोगों ने बहुत पसंद किया. सुनिए.

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी।
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी।
0: हैं और फिल्मों में गीत संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो, आप नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूज़िक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह

0: मैं जहां भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है, कुछ तो कोशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गज़लों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
1: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो
0: अच्छी बात है ना। और मुझे मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरे चार गाने किए और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज़ अहमद फैज़, नदीम कासमी, अली रज़ा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूँगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप ज़रूर सुनवाइए। फैज़ अहमद फैज़ की ये रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीज़ें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसे ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं।
1: मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
0: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गज़लों को ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गज़लें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गज़ल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलें थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
1: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नज़र करें।
0: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफ़ी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे थे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये

0: सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप इसमें?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। हमें मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते हैं ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए। और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है। और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था, लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया। बाकायदा 6-6 महीने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फ़र्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं। उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं।
1: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने।
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को, फिल्मों से। तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी, मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसे रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है। और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुँच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे। आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज़ पेश करने का। और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खास तौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज़्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते ना हमारी एक्टिविटीज़ रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
0: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
1: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं। अगर आवाज़ साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
0: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का
1: जी,
0: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
1: जी, मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी, बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
0: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला LP म्यूज़िक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूज़िक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल हैं निगाहें नीची किए,

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं।
1: जी
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में,
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत
0: तो
1: खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दारुस्सलाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था। फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली मिली और वो भी एक किस्म का प्राइस था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलोड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है,
1: जी
0: आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हो?
1: जी मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए। जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे, वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूँ।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था,

काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहदिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड़ का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के।

मुंबई केंद्र से FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं और अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: सपनों को सच करने की ताकत रखो, हर गिरते कदम में बस एक नई उम्मीद रखो, मुस्कुराकर आगे बढ़ो क्योंकि हार नहीं जीत तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल नागर और स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे श्रोताओं का हमारे इस युववाणी कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं, साथ ही यहां बात होती है युवाओं के सोच की, संघर्ष की और उनकी सफलता की। इसी के साथ कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक और रेडियो साथी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी आपको मिलवाते हैं।
1: जी हाँ साथियों, स्वीकार कीजिए आपके अपने रेडियो दोस्त कन्हैया का प्यार भरा नमस्कार। मुझे पता है कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी का काफ़ी बेसब्री से। तो आपकी जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो समाप्त हो रही हैं और युवाणी कार्यक्रम अपने स्टार्ट हो रहा है।
0: तो
1: बिल्कुल राहुल, मैं स्वस्थ और मस्त हूँ, साथ ही उम्मीद है कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे
0: और हमारे जो श्रोता हैं जो इस वक्त हमारा यह कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो कन्हैयालाल जी, अभी गर्मी का सीजन है और लू बहुत चल रही है, तो ऐसे में क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं का, लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
1: बिल्कुल, जो अभी का जो मौसम है फिलहाल लू का दौर है और मैं सभी युवा साथियों से यूँ कहूँगा कि जो भी हमारे सभी श्रोता है वो सभी अपना बचाव करें। कहीं पर अगर जाते हैं जरूरी काम से तो अपना जो सिर है वो ढक कर चले, अगर वो बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट कंपलसरी लगाना ही है, वैसे भी लगाना है लेकिन अभी तो फिलहाल अपनी बचाव के लिए, लू से बचाव के लिए भी हेलमेट लगाना ही है। और अगर वो साथ में जा रहे हैं तो पानी की बोतल अपनी जरूर ले जाएं। और यही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी परिंदे का जो बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि लोग परिंदे बांधते हैं, तो इस प्रकार से कोई अभियान चलाया जाता है तो उसमें सहभागिता अपनी अपनाएं,
0: मतलब कि हमारे साथ साथ हमें पशु पक्षियों की प्यास का भी ध्यान रखना
1: चाहिए।
0: जी
1: बिल्कुल, गर्मी इतनी है कि हमें पशु पक्षियों के जो मुख जानवर है उसका तो हमें ध्यान रखना ही है।
0: बिल्कुल, जो पशु पक्षी जो रहते हैं वो तो बोल भी नहीं सकते हैं, तो उनको तो पानी पिलाना ही जरूरी है। लू हिट स्ट्रोक से बचने के लिए खुद को हाइड्रेट रखें, हल्के और ढीले सूती कपड़े पहने और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक तेज धूप से बाहर जाने से बचे। जरूरी हो तो छाता, टोपी और सन स्क्रीन का इस्तेमाल आप जरूर करें।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, सुंदरता तो युवाओं की पहली पसंद है और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने से हो सकता है कि उनकी सुंदरता बिगड़े नहीं, धूप में झुलसने से वो बच जाए, तो युवाओं को सजेस्ट किया जाता है कि वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें।
0: वहीं दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। सादा पानी पीने के साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी, शिकंजी का सेवन आप करते रहिए, जिससे कि आपके शरीर में भी एक ठंडक बनी रहेगी।
1: बिल्कुल दोस्तों, और जंक फूड के इस्तेमाल से बिल्कुल बचना है और हेल्दी जो फ्रूट वगैरह सीजनेबल जो सब्जियां हैं वो खाते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने इस युवाणी कार्यक्रम को सुनते रहिए।
0: वहीं अपने आहार में खीरा, तरबूज और दही आदि शामिल करके भी गर्मी से आप राहत पा सकते हैं।
1: जी
0: तो कन्हैयालाल जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे श्रोताओं को बताएं कि आज के इस कार्यक्रम में हम कौन कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं।
1: बिल्कुल राहुल, हमारे दोस्तों के लिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे विश्व फेयर प्ले दिवस से, और मैदान का शिष्टाचार जिसे हम कह सकते हैं, प्रतिद्वंदी नहीं वह आपका साथी है, नीलम संजीव रेड्डी की जो जयंती है उस पर भी हमारी चर्चा की शुरुआत होगी, और हजारी प्रसाद त्रिवेदी जो हिंदी भाषा के महान उपन्यासकार है, कथाकार हैं, उनकी पुण्यतिथि भी आज है तो उस पर हमारी चर्चा होगी। साथ ही मारो राजस्थान में हम चर्चा करेंगे
0: डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में। वहीं चिराग में है युवा

0: मेहंदी और क्रिएटिविटी पर पूजा नागर से कन्हैयालाल नागर की बातचीत, और जहां हम आपको बताएंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में।
1: और जो रोज हम दोस्तों के लिए लेकर आते हैं आज का इतिहास, वो हमारे दोस्तों के लिए अंत में रहेगा। सही राहुल, बिल्कुल हम एक चीज भूल रहे हैं, हम हमारे दोस्तों के मनोरंजन का भी पूरा पूरा इंतजाम करके आए हैं।
0: हाँ, ये बात तो आप बताना ही भूल गए।
1: जी बिल्कुल, तो क्यों ना दोस्तों अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और शुरू करते हैं इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ और इस कार्यक्रम की शुरुआत।

0: 19 मई और आज दिवस को हम मना रहे हैं विश्व फेयर प्ले दिवस के रूप में। द्वारा हर साल 19 मई को आधिकारिक तौर पर विश्व फेयर प्ले दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि खेलों के साथ साथ दैनिक जीवन में ईमानदारी, एकजुटता और निष्पक्ष खेल के नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। साथ ही खेलों में समानता, ईमानदारी और सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल राहुल, सही कहा आपने। खेलों को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। 1 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित संकल्प के बाद से पहली बार 19 मई 2025 को यह दिवस विश्व स्तर पर आधिकारिक रूप से मनाया गया था और अब इस दिवस को हर साल 19 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो खेलों में सकारात्मक व्यवहार, ईमानदारी और के मूल्यों को करना है और इससे युवा खिलाड़ियों को दिखाया जाता है कि खेल सिर्फ जीते जाने के लिए नहीं होते बल्कि अपनी इस सम्मान और टीम के वर्क का भी एक जरिया होता है। इस दिन दुनिया भर के खेलों से जुड़े लोग स्कूल और संगठन वर्कशॉप, प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं और राहुल इसमें खेलों में नैतिकता और सकारात्मकता को बढ़ावा देने के संदेश भी दिए जाते हैं।
0: बिल्कुल कह रहे हैं लाल जी कि विश्व फेयर प्ले दिवस जो है, ये दिवस आज हम जो मना रहे हैं, इसमें खेलों में नैतिकता और सकारात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही सकारात्मक व्यवहार, ईमानदारी और बराबरी के मूल्यों को प्रमोट करता है। यानी कि जो खिलाड़ी रहते हैं वो क्या रहते हैं कि कई बार हार जाते हैं तो उनके मन में जो है कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा दुश्मनी वाला भाव आ जाता है सामने वाले के प्रति। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ खेल है और उसे खेल के नजरिए से ही देखना चाहिए
1: जी।
0: साथ ही विश्व फेयर प्ले दिवस का मकसद सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं है बल्कि ये समाज में भी नैतिकता और बराबरी को बढ़ावा देता है
1: जी,
0: और हर किसी के लिए प्रेरणा देने का यह एक शानदार अवसर है।
1: इसी बात से मुझे ध्यान आता है राहुल के भारत के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं, हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी।
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: उनकी भावना हमेशा यही रही है कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने हमेशा से यही सीख दी है कि खेल को हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए, प्रतिद्वंदी व्यक्ति को हमेशा खेल के तरीके से ही हराना चाहिए
0: जी। बिल्कुल,
1: कभी भी उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, जो भी हमारे सामने जो भी प्रतिद्वंदी है उनको भी हमें उतना ही सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ खेल है
1: जी। और इसी कारण वो लोगों में क्या है कि बहुत फेमस हो गए हैं और यूं कहे कि विश्व के जो खेल प्रेमी हैं उन सभी के दिल उन्होंने जीत लिए हैं।
0: और खेल में चाहे जीत हो जी, या हार, दोनों ही चीजें हमें कुछ सिखा के जाती है
1: जी। बिल्कुल, जो जो खिलाड़ी युवा हमारी बात को सुन रहे हैं हम सभी से गुजारिश करते हैं कि हमेशा खेल को खेल की भावनाओं से ही खेलना चाहिए।
0: वहीं ये प्रशिक्षकों और दर्शकों केवल जीतने की लालसा से ऊपर उठकर निष्ठा खेल भावना को प्राथमिकता देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। विश्व फेयर दिवस हमें याद करता है कि खेलों में ईमानदारी, सम्मान और समानता को बढ़ावा देना कितना जरूरी है। तो चलिए इस दिवस को मनाने के साथ साथ ही हम सब खेलों और समाज दोनों में सकारात्मक बदलाव लाएं।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आइयो साथियों, अब बात करते हैं कि मैदान का शिष्टाचार प्रतिद्वंदी को क्या सिखाता है और प्रतिद्वंदी हमारा साथी कैसे होता है।

0: साथियों, मैदान चाहे वह खेल का हो या जीवन का, सच्चा शिष्टाचार यही सिखाता है कि आपका प्रतिद्वंदी कोई दुश्मन नहीं है बल्कि एक साथी होता है। उसी के कारण खेल में प्रतिस्पर्धा, रोमांच और सीखने का अवसर मिलता है। वही शिष्टाचार केवल एक खेल नीति नहीं बल्कि हमारे जीवन में ईमानदारी, टीम वर्क और आपसी सम्मान की भावना को भी दर्शाता है।
1: बिल्कुल सर, ये हमें कई सारी मेहनत की है तो खेल के बजाय स्वीकार एक शिष्टाचार का हिस्सा
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: हम कोई भी खेल, दो पक्ष खेल खेल रहे होते
0: जी
1: हैं,
0: जी बिल्कुल
1: वो हार लेकिन वो खेल को लंबा खींच रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो आप स्वीकार कर लें, क्योंकि ये एक शिष्ट बताती है केवल प्रतिस्पर्धा है, सहयोग का मंच है। मैं जो खिलाड़ी आप खेल रहे नहीं बल्कि खेल को है, खिलाड़ी खेल की मर्यादा और नियमों का करते हैं वे ही असल मायने में खेल की सच्ची भावनाओं को जीवित रखते हैं। साथ
0: एक दूसरे का सम्मान करना और अच्छे खेल की सराहना करना ही एक सच्चे खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान होती है। साथियों, कोई भी खेल हमें अकेले नहीं खेल सकते। प्रतिद्वंदी वही व्यक्ति और वही उत्प्रेरक होता है जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की चुनौती हमें देता है। दोनों पक्षों का लक्ष्य एक बेहतरीन और निष्पक्ष मुकाबला पेश करना होता है, जो इसे यूं कहे कि एक अच्छे उद्देश्य की ओर बढ़ाता है।
1: मजबूत को अपने में कोई भी जीते अंत में हार, यह दर्शाता है कि खेल से ऊपर इंसानियत और सम्मान है। होता है खेलते इंसानियत भी आगे बढ़ती है।
0: तो इस भावना के साथ मैदान में उतरे और एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं।
1: तो चलिए साथियों, अब ले चलते हैं आपको चिराग युवा मेहंदी क्रिएटिविटी पर पूजा लांगर की बात। तो आइए सुनते हैं।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, मैं हूं आपका दोस्त कन्हैया। तो आज हम मिलने जा रहे हैं गांव मिश्रोली की मिट्टी से जुड़ी आवाज। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो एक साथ कई प्रतिभाओं को लेकर आगे बढ़ रही हैं। ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में रुचि, मेहंदी आर्ट सीखने और सिखाने का हुनर, प्राइवेट स्कूल टीचर की जिम्मेदारी और हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। हम स्वागत करते हैं पूजा नागर का। पूजा जी, आपका हमारे इस युवाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। नमस्कार सभी श्रोताओं, मेरा नाम पूजा नागर है और मैं मिश्रोली की रहने वाली हूँ। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। मुझे बचपन से ही कुछ नया सीखना और क्रिएटिव काम करने का शौक रहा है। इसी वजह से मुझे ब्यूटी पार्लर और मेहंदी डिजाइनिंग में भी काफी इंटरेस्ट है। आज मैं मेहंदी सीख भी रही हूँ और दूसरों को सिखाने का प्रयास भी कर रही हूँ।
0: वाह, मतलब पढ़ाई भी, टीचिंग भी और क्रिएटिविटी भी, इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज करना आसान नहीं होता। सबसे पहले बताइए कि ब्यूटी पार्लर और मेहंदी की तरफ आपका रुझान कैसे बना?
2: असल में मुझे शुरू से ही आर्ट और डिजाइनिंग का बहुत शौक रहा है। बचपन में जब भी कोई शादी पार्टी होती थी तो मैं मेहंदी डिजाइन को काफी गौर से देखती थी
0: जी।
2: धीरे धीरे मैंने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर मुझे लगा अगर इसे मैं मन से सीखूंगी तो मैं करियर बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और आजकल तो मेहंदी आर्ट भी एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है। तो जब आपने शुरुआत की तब क्या कोई कठिनाई भी आई या शुरुआत ही आपकी बहुत अच्छी रही, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं तक आपकी बात पहुँचाए?
2: हाँ, शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगा था कि मैं सही कर पाऊंगी या नहीं। कई बार डिजाइन बिगड़ भी जाते थे लेकिन मैंने हार नहीं मानी। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया, मेरे परिवार ने भी मेरा काफी साथ दिया, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ा।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, क्योंकि किसी भी काम में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र लगातार मेहनत ही होता है। अगर हम टीचर वाली आपकी भूमिका की बात करें तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का अनुभव कैसा रहता है?
2: मुझे बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है।

0: जब बच्चे कुछ नया सीखते हैं और मुस्कुराकर मैम समझ आ गया बोलते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। टीचर होना सिर्फ पढ़ाना नहीं होता बल्कि बच्चों को अच्छे संस्कार और आत्मविश्वास देना भी होता है।
1: वास्तव में आपकी ये बात दिल को छू जाती है। आजकल बहुत सारे युवा सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, लेकिन आप कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? इस प्रकार भी हमें थोड़ा सा सुझाव करें ताकि हमारे जो कुछ युवा हैं वो इस प्रकार से अगर अलग अलग फील्ड में कार्य करते हैं तो वो भी टाइम मैनेजमेंट शायद आपसे सीख सके।
0: मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि समय की कीमत समझू। दिन का थोड़ा समय स्कूल के लिए, थोड़ा सीखने के लिए और थोड़ा परिवार के लिए निकालती हूँ। अगर इंसान मन से कुछ करना चाहे तो समय अपने आप निकल जाता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। अब एक मजेदार सवाल आपसे पूछता हूँ कि मेहंदी डिजाइन बनाते समय सबसे ज्यादा कौन सी डिमांड आती है, ब्राइडल डिजाइन या सिंपल डिजाइन?
0: हाँ जी बिल्कुल आपने सही पूछा। आजकल ब्राइडल डिजाइन का काफी ट्रेंड है, लेकिन कई लड़कियाँ सिंपल और स्टाइलिश डिजाइन भी बहुत पसंद करती है। हर किसी की पसंद अलग होती है और उसी हिसाब से डिजाइन बनाना अच्छा लगता है मुझे।
1: अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि आप आगे चलकर अपना खुद का बड़ा ब्यूटी पार्लर और मेहंदी ट्रेनिंग शुरू करें तो क्या करना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल, मेरा सपना है कि मैं आगे चलकर ऐसा सेंटर शुरू करूं जहां गांव की लड़कियां सीख सके और आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि हुनर किसी शहर का मोहताज नहीं होता। अगर मेहनत और सीखने का जज्बा हो तो गांव से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं।
1: वाह, आपकी सोच तो वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों यही होती है असली प्रेरणा, खुद सीखना और दूसरों को भी आगे बढ़ाना। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार आज की लड़कियों को सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान देना चाहिए?
0: मेरे अनुसार लड़कियों को आत्मविश्वासी बनना चाहिए, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो या कला हो या कोई हुनर हो। हर चीज इंसान को मजबूत बनाती है और सबसे जरूरी बात अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए।
1: बहुत सुंदर संदेश है। अब अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई मोटिवेशनल संदेश देना चाहेंगे आप?
0: मैं बस इतना कहना चाहूंगी, किसी भी काम को छोटा मत समझिए। जो भी सीखना चाहते हैं आज शुरुआत कीजिए। गलतियां होगी, लोग बातें भी करेंगे, लेकिन अगर मेहनत जारी रखी जाए तो सफलता जरूर मिलती है। और मैं हमेशा खुद पर विश्वास रखती हूँ और यही सलाह देती हूँ कि व्यक्ति को खुद पर विश्वास रखना चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आपने आज अपनी बातों से साबित कर दिया कि मेहनत, सीखने की चाह और आत्मविश्वास इंसान को अलग पहचान दिलाते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ थी पूजा नागर, जिन्होंने अपने अनुभव और प्रेरणादायक विचार हमारे साथ साझा किए हैं चिराग जल युवा डायरी में। आज हमने पूजा नागर से बातचीत करी।
2: क्रिएटिविटी पर पूजा नागर से कन्हैया लाल की बातचीत, जिसमें अच्छी बात है मेहंदी आर्ट और क्रिएटिविटी के बारे में कि तो बारे में जयंती जो को मनाई जाती है।
1: बिल्कुल राहुल, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 19 मई 1913 को अविभाजित मद्रास रेजिडेंस के इल्लूर, वर्तमान में जो अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है, में एक किसान परिवार में हुआ था। और नीलम संजीव रेड्डी जी के जीवन के प्रकाश जीवन पर अगर हम प्रकाश डालते हैं तो 1929 में महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नीलम संजीव रेड्डी की अगर हम बात करें तो नवगठित के यह पहले मुख्यमंत्री बने थे 1956 से 1959 के बीच में। साथ ही यह दो बार लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो अगर हम बात करें तो काल इनके समयावधि की तो 1967 से 1970 के बीच में यह दो बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं।
2: No.

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों। साथियों, आपने ट्यून कर रखा है FM 103.3 झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम। साथियों, आज के दिन हम आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश के दुबे का छपरा गांव में हुआ था। दी जी ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर हिंदी साहित्य का एक नया मूल्यांकन किया। इन्हें 1970 और 1973 में अकादमिक पुरस्कार में सम्मानित किया गया था।
2: बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा। और हिंदी साहित्य के इतिहास और आलोचना के क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और कबीर शामिल है। इनके ललित निबंध बहुत प्रसिद्ध हैं। अशोक के फूल और विचार और वितर्क इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। साथ ही इन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित उत्कृष्ट उपन्यास लिखे हैं, जैसे बाणभद्र की आत्मकथा और अनायदान का पौधा इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके प्रमुख आलोचनात्मक की अगर बात करें तो सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल है।
1: तो आइए साथियों, अब चलते हैं मनोरंजन की दुनिया की तरफ और सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों हम बात कर रहे थे आचार्य हरिहरि प्रसाद त्रिवेदी जी की पुण्यतिथि पर। आचार्य हरिहरि प्रसाद त्रिवेदी जी की भाषा विशुद्ध परिमार्जित और सांस्कृतिक निष्ठ है, जिसमें उर्दू फारसी और अंग्रेजी के व्यवहारिक शब्दों का भी सुंदर मिश्रण है। त्रिवेदी जी को 1957 में भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। 19 मई 1979 को हिंदी साहित्य का यह महान निष्प्रक्ट अस्त्र हो गया। आचार्य हरिहरि प्रसाद त्रिवेदी जी ने भारतीय साहित्य को सांस्कृतिक चेतना, मानवता और ऐतिहासिक परंपराओं से जोड़ा। साहित्य में इनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक और मानवतावादी था। भारतीय सांस्कृतिक और परंपरा के मर्मज्ञ आदरणीय हरिहरि प्रसाद त्रिवेदी जी की पुण्यतिथि पर हम इनको श्रद्धा नमन करते हैं और भाव विभिन्न श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपका व्यक्तित्व और विचार सदैव साहित्य जगत को अलोकित करता रहेगा और हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा।

0: दोस्तों ज्ञान विज्ञान डीएनए और जेनेटिक्स
1: डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में। डीएनए और जेनेटिक्स दोनों जीवन के निर्माण और हमारी विशेषताओं को तय करने वाले महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
0: डीएनए यह हमारे शरीर का एक जैविक निर्देश पुस्तिका या ब्लूप्रिंट है और जेनेटिक्स यह विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि कैसे माता पिता के गुण या लक्षण डीएनए के जरिए बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। बात करते हैं डीएनए की, जो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। यह हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर मौजूद एक बहुत छोटा सा अणु होता है। यह बिल्कुल किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड की तरह काम करता है और इसमें तय होता है कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपके बालों का रंग और प्रकार कैसा होगा, आपकी लंबाई कितनी होगी और यूं कहें कि आपके शरीर की जो बनावट है वह कैसी होगी और वो कैसा काम करेगा और कैसा बढ़ेगा।
1: जिन डीएनए का भी एक छोटा हिस्सा होता है, आप डीएनए रूपी किताब जो किसी एक खास विषय देता है, जब ये एक अलग जीन है होता तो के लिए एक।
0: बिल्कुल राहुल, सही कहा। हमने बात करें जेनेटिक्स की तो जेनेटिक्स को हिंदी में अनुवांशिकी कहते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जब हम पहले पढ़ते या खोज करते हैं कि माता पिता के लक्षण जैसे कदकाठी, शक्ल या कोई बीमारी उनके बच्चों में कैसे आती हो तो कैसे प्रोसेस को कि जेनेटिक्स कहते हैं। वंशानुक्रम यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता

0: से लक्षण बच्चों में जाते हैं, इसी वजह से बच्चे अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के जैसे दिखाई देते हैं उसे। और डीएनए और जेनेटिक्स में मुख्य अंतर यह है कि डीएनए एक पदार्थ या अणु के हैं जो शारीरिक जानकारी को संरक्षित रखता है, जबकि जेनेटिक्स एक विज्ञान का अध्ययन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के ट्रांसफर होने की जांच करता है।
1: निर्देश किए होते हैं और इसमें हैं और वंशानुगत कैसे होती हैं। एक किताब उस किताब कोशिकाओं से डीएनए डीएनए होता है। ये जीव के ये निर्देश का काम करता है।
0: बिल्कुल राहुल, सही कहा आपने। जेनेटिक्स का उपयोग और प्रभाव की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स कई बीमारियों जैसे थैलेसीमिया, स्किल सेल एनीमिया या कुछ विशेष प्रकार के कैंसर जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक्स टेस्टिंग के जरिए डीएनए की जांच करके इन बीमारियों के जोखिम का समय से पहले पता लगाया जा सकता है। वहीं फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने और इन्हें कीड़ों से बचाने के लिए बीजों में जीन स्तर पर बदलाव किया जा सकता है। एक ही परिवार के सदस्य एक जैसे होने के बावजूद एक दूसरे से थोड़े अलग क्यों होते हैं, इसका अध्ययन भी जेनेटिक्स में किया जा सकता है। जबकि डीएनए हमारे शरीर का एक विस्तृत निर्देश पुस्तकालय है जिसमें हमारी आंखों का रंग, बालों का प्रकार और लंबाई, सभी शारीरिक विशेषताओं की जानकारी सुरक्षित रहती है।
1: उद्देश्य है ये विकास है। तो से ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया की तरफ और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए साथियों, अब आपको जानकारी देते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 13 मई 2020 को भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुरू किया गया एक मिशन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महामारी के समय देश को सहायता प्रदान करने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी।
4: बिल्कुल राहुल, आपने आत्मनिर्भर शब्द को जैसे ही

0: बोला, सबसे पहले इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो अपने पैरों पर खड़ा होना, खुद सक्षम बनना और दूसरों पर निर्भरता कम करना। भारत एक विशाल देश है, हमारे पास युवा शक्ति है, प्रतिभा है, संसाधन है, मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन कई वर्षों तक हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहे। इसी सोच को बदलने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है।
1: बिल्कुल, पांच घटकों पर केंद्रित है, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्थाएं, जीवंत सांख्यिकी और मांग। लिए सरकार द्वारा कुल 20 लाख करोड़ में लगभग देश की जीडीपी का 10% के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। इसमें कृषि, गरीबों को राहत पहुंचने के साथ साथ कई ढांचा सुधार किए गए। उद्यमों मजदूरों को भी इस अभियान से काफी सारा फायदा हुआ है।
0: आत्मनिर्भर भारत का अर्थ बिल्कुल राहुल यह भी नहीं है कि हम दुनिया से अलग हो जाएं। इसका मतलब यह है कि हम इतने सक्षम बने कि दुनिया भी भारत पर भरोसा करे। इस अभियान का सबसे प्रसिद्ध नारे की अगर हम बात करें तो वोकल फॉर लोकल है, यानी स्थानीय वस्तुओं को अपनाइए, भारतों को बढ़ावा दीजिए। अगर हम अपने देश में बनी चीज खरीदेंगे तो हमारे देश के छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर और उद्योग को आगे बढ़ेंगे और इससे रोजगार भी बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
1: आत्मनिर्भर देश को हर में बनाना और भारतवादों को इस उत्पादन दिलाना है व रोजगार और नए अवसर सृजित करना है, साथ बढ़ता करना और विनिर्माण व अनुसंधान को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत अभियान पांच मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। दूसरा स्तंभ की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बुनियादी ढांचा, सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, डिजिटल सुविधाएं, इन सबका विकास देश को मजबूत बनाता है। तीसरे स्तंभ की अगर हम बात करें तो सिस्टम, यानी आधुनिक व्यवस्था, भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम से जोड़ना है। चौथा आधार स्तंभ अगर हम बात करें तो डेमो क्रेसी, यानी जनसंख्या शक्ति, और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, हमारे युवा ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और पांच स्तंभ की अगर हम बात करें तो डिमांड, यानी मांग, देश में बनी वस्तुओं की मांग बढ़ाना। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारी और उद्योगों को विशेष सहायता दी गई है, क्योंकि छोटे उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं।
1: तो आइए साथियों, अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया की तरफ और सुनवाते हैं यह प्यारा सा गीत।

0: साथियों, हर दिन होता है कुछ खास और वह बन जाता है आज का इतिहास। तो आइए जानते हैं आज का इतिहास। 19 मई 2006 में आज के दिन बांग्लादेश के मलेशियाई उद्योगपति टी रविचंद्रन ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। वहीं 19 मई 1999 में आज के दिन भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान दीपक पुनिया जी को 86 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते ही का जन्म आज के दिन हुआ था।
1: दोस्तों, आज ही के दिन गिरीश कनाड 19 मई 1938 को जन्मे थे और साथ ही 10 जून 2019 को उनका निधन हुआ था। उनकी जयंती पर सादर नमन। महज 23 साल की उम्र में अपना पहला नाटक ययाति लिखकर एक गंभीर नाटककार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करी। प्रख्यात निर्देशक बीवी कारंत और श्याम बेगनेल के सहयोगी व सह निर्देशक के रूप में भी काम किया। 1970 में कन्नड़ फिल्म संस्कार में मुख्य अभिनेता और पटकथा लेखक के रूप में काम करने का मौका उन्हें मिला। फिल्म वंश वृक्ष में बीवी कारंत के साथ स्वतंत्र रूप से निर्देशन किया और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता।
0: वहीं 19 मई 2007 में आज ही के दिन अमेरिकी सीनेट में समग्र आवर्जन सुधार विधेयक पर सहमति मिली थी।
1: तो दोस्तों, घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया कि वक्त हो गया है अब आपसे विदा लेने का। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें अपना सुझाव हमारी मेल आईडी airjhl1993@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम समाप्ति की इजाज़त आपके अपने दोनों रेडियो साथी को।
0: मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल नागर
1: और मैं कन्हैया।
0: दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये झालावाड़ केंद्र है FM 103.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं आज हमारे शेष रहे कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय कार्यक्रम विवरण में।

श्रोताओं से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 6:05 का समय रहेगा फिल्म संगीत का।

6:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी और फिर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार राजस्थानी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 7 बजे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। किसान वाणी में आज मंगलवार को आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम और विषय रहेगा पशुपालन में पशु आहार एवं चारा प्रबंधन का महत्व। बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में होंगे डॉक्टर हितेश मुवाल जो कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ से हैं। तो जो भी श्रोता इस विषय में जानकारी चाहते हैं या उनकी कोई समस्या है तो वो फोन करके हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। 7:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

श्रोताओं, ये थे आज हमारे शेष रहे कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। आकाशवाणी का ये झालावाड़ केंद्र है FM 103.2 MHz पर। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से

0: से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले पांच वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं और अब समय है फिल्म संगीत का। राहत फतेह अली खान की आवाज़ में आई करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। गीत के लिए बोल लिखे हैं विशाल ददलानी ने और संगीत है विशाल शेखर का। फिल्म है अनजाना अनजानी।

उनकी आवाज में ये गीत गीत के लिए बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है नुसरत फतेह अली खान ने। फिल्म का नाम है और प्यार हो गया।

0: तेज चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के झोंके।
1: ऐसे में बच्चों को बाहर जाने से कोई कहाँ तक रोके?
0: मम्मा, सर दर्द।
2: अगर बाहर से आने पर बच्चों में तेज सर दर्द, बेहोशी, अधिक पसीना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सांस या धड़कन तेज होना, उल्टी या बुखार जैसे लक्षण नजर आए तो ये लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत बच्चों को छांव में लाएं, कपड़ों को ढीला करें, पंखे की हवा तेज करें, बच्चे को ठंडा पानी पिलाएं और उल्टी करवट लेटाएं। कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं।
3: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनवाते हैं आपको केके की आवाज में फिल्म भूल भुलैया से। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत है प्रीतम का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए आपको सुनवाते हैं बत्ते गुल मीटर चालू फिल्म से। आतिफ असलम, अल्तमिश फरीदी और आशीष की आवाज़ में इस गीत के लिए बोल लिखे हैं नुसरत अली फतेह अली खान ने और इसको लिखा है मनोज मुंतशिर ने।

आतिफ असलम और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये झालावाड़ केंद्र है FM 103.2 MHz पर। थोड़ी देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और फिर होगी जिले की चिट्ठी। उसके बाद आप सुन सकते हैं राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने से अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान को देश भर में महत्वपूर्ण खनिजों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगी। मुख्यमंत्री

0: भजनलाल शर्मा और केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य को कोयले की निर्बाध आपूर्ति, तकनीक आधारित खनन और खनिजों के बेहतर दोहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार के दूरदर्शी नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण देश के खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और निवेश अनुकूल वातावरण से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। श्री रेड्डी ने बताया कि रक्षा, सौर ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता राजस्थान में है। उन्होंने खनन से जुड़े मुद्दों के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया, जिससे प्रदेश में निवेश और उत्पादन बढ़ सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने बाड़मेर और बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध रेयर अर्थ एलिमेंट्स के दोहन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण से राज्य में चिन्हित साइट्स की जानकारी साझा करने को कहा, ताकि इस भूमि का उपयोग अन्य कामों में नहीं किया जा सके। बैठक में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक और राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद राज्य के सभी टर्मिनल, डिपो और रिटेल आउटलेट पर पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति भी पूरी तरह से सामान्य है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों प्रमुख तेल कंपनियां मिलकर वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रख रही हैं। उन्होंने आमजन से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने, घबराकर अनावश्यक खरीदारी नहीं करने और ईंधन की उपलब्धता के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आज झुंझुनू प्रवास के दौरान लोगों से ईंधन बचाने की अपील की।
1: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रीतें होती हैं और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है तो ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र हित में, तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने कितने कपड़े काफिले में कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था, लेकिन मैंने भी काफिले में मना किया, हमारी ज्यादा गाड़ियां साथ नहीं गए थे। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में है और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और राज्य सरकार तो उसके ऊपर निश्चित रूप से काम कर रहा है और आगे भी निश्चित रूप से इसका अच्छा एक नेता।
0: इस बीच आज सवाई माधोपुर जिले में 11 पेट्रोल पंप्स और मापतौल में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद आज उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान एक पेट्रोल पंप पर 5 लीटर की आपूर्ति पर 30 मिलीमीटर पेट्रोल कम देना पाया गया, जिसके बाद संबंधित पंप के नोजल सीज कर दिए गए। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं और 4,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई के तौर पर सैन्य सटीकता, सूचना नियंत्रण और कूटनीतिक संदेश तथा आर्थिक संकल्प को एक साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने गहराई तक वार करते हुए आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया, एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को तोड़ दिया। सेना प्रमुख ने यह बात नई दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत को शांति सुनिश्चित करने, विकास की गति को तेज करने और वैश्विक माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी राष्ट्रीय शक्ति का इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025

0: के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों की पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। इन बसों के सुचारू संचालन के लिए राज्य में 9 अत्याधुनिक ई बस डिपो बनाए जा रहे हैं। आज जयपुर में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई परिवहन सेवाओं और बसों की खरीद प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए ई बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और आमजन को सुगम परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में भी विस्तार करने का फैसला किया गया। बेड़े में अगस्त माह तक 144 ब्लू लाइन बसें और 30 एसी स्लीपर बसें शामिल की जाएंगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने आज पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल सुविधा, प्रतीक्षालय और पार्किंग सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। डीआरएम ने अधिकारियों को सुरक्षा मानकों और रेल संरक्षा मापदंडों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कोटा के मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए अब सौर ऊर्जा आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग की इस पहल से घने जंगलों में स्थित प्राकृतिक आवास और कृत्रिम जल स्रोतों पर बिना किसी रुकावट के 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी। गर्मी के मौसम में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकारियों की गतिविधियों को रोकने में ये प्रणाली बेहतर कारगर साबित होगी। अधिकारियों ने बताया कि इन अत्याधुनिक कैमरों की मदद से वन्य जीवों के व्यवहार का वैज्ञानिक डेटा जुटाने और उनकी टेरिटरी की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। और अब मौसम। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों शेखावाटी क्षेत्र और कोटा संभाग में भीषण लू का प्रकोप जारी है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है और तेज गर्म हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने और गर्मी में बढ़ोतरी की संभावना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की
0: तेज गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ ही ओआरएस कॉर्नर भी बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की।

जा रही है, वहीं विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी में हम बात करेंगे हालिया खबरों की, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों की, ग्राम रथ अभियान की और भीषण गर्मी और लू से बचाव के उपायों की। चिट्ठी की शुरुआत में सबसे पहले बात क्षेत्र की प्रमुख फसल के बारे में। चित्तौड़गढ़ देश के प्रमुख अफीम उत्पादक जिलों में शामिल है। यहाँ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की ओर से जारी विशेष लाइसेंसों के जरिए सीमित और वैध तरीके से अफीम खेती की जाती है। हर साल किसानों की ओर से उत्पादित गुणवत्ता के आधार पर सरकारी खरीद और तुलाई केंद्र बनाए जाते हैं। खासतौर पर यहाँ दो तरीकों से अफीम पैदा की जाती है, गम और CPS पद्धति। गम पद्धति में पौधों में चीरा लगाकर अफीम का दूध निकाला और सुखाया जाता है। वहीं सेंट्रलाइज्ड पॉपी स्ट्रॉ CPS पद्धति में बिना चीरा लगाए सीधे डोडो की तुलाई की जाती है। हाल ही में जिले में अफीम तुलाई प्रक्रिया पूरी हुई। नारकोटिक्स विभाग ने 3 खंडों के 756 गांवों के करीब 16,500 किसानों से अफीम खरीदी। इनसे लगभग 1,35,000 किलो अफीम खरीदी गई। इसके लिए पहले और दूसरे खंड के किसानों को लगभग 15,67,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं तीसरे खंड के करीब 1,000 काश्तकारों को 5,61,00,000 रुपए का भुगतान हुआ। CPS पद्धति के तहत 684 गांवों के 4,800 किसानों को 5,59,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने पीने के पानी की समुचित आपूर्ति को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने जिले की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पर्याप्त और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बंद पड़े आरओ की जल्द मरम्मत करवाने, हैंडपंपों के पास सोखता खड्डे बनवाने और जल संरक्षण के कामों में तेजी लाने की बात कही। जिला कलेक्टर ने भीषण गर्मी की दौर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रचंड गर्मी के समय लू और तापघात की आशंका रहती है। ऐसे में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और श्रमिक वर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरदर्द, तेज बुखार होने की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। उन्होंने आमजन को तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने की सलाह दी। जिला कलेक्टर ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। 25 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ ही गांव ढाणियों तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाए और इस मुहिम में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आदिवासी अंचलों में सरकारी योजनाओं की पहुंच मजबूत करने और जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन दिनों देश भर में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसे जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को

0: जनजातीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संवेदनशील प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाए। जिले के 7 ब्लॉकों की 76 ग्राम पंचायतों के 158 आदिवासी बहुल गांवों में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आदि सेवा केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने बेगू के जोगणिया माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री बिरला ने राजपूत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे फिजूल खर्ची पर लगाम लगती है, साथ ही एकता और भाईचारे की भावना में भी मजबूती आती है। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से करीब 91,000 से अधिक प्रकरण निस्तारित किए गए। इनमें लगभग 11 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य सरकार रे साफ नीतियाँ, राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रातौरों सामी आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय स्थला माए राखण रा पहली रा हुक्म ने पाछो लेवणो नट्यो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावण सारू ई साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। और राज्य रा घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। आवता एक सप्ताह ताई सरहदी हलका में पारो 44-46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवण री शंका। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश ने क्रिटिकल मिनरल्स रो खास केंद्र बनावण सारू केंद्र और राज्य सरकार मिलर काम करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी री मौजूदगी माए आज जयपुर माए मुख्यमंत्री रा रहवास माथे राखी जी आला दर्जारी मीटिंग माए ओ फैसलो करी चियो। मीटिंग माए मुख्यमंत्री बाड़मेर और बालोतरा रा सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स से जुड़ियो नोडल अधिकारी नियुक्त करण रा हुकम दीना। व्यभारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण रा अहलकाराओं राज्य में पिछाण करीजी ठोड़ा ने जानकारी देवन बाबत कहो। ई मौके केंद्रीय मंत्री रेड्डी कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री आगेरी सोच नीतियां और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे कारण देश माए जमी हेटों खनिज निकालवारा हलका माए घणो सुधार फियो है। वे कहो कि राज्य सरकार री साफ नीतियां और निवेश रे अनुकूल वातावरण राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रातौरों सामी आ रियो है। श्री रेड्डी कहो कि राजस्थान माए रक्षा सूरज री रोशनी बिजली बनावण और मोटर गाड़ियां बनावण रा हलका माए आ खनिजा री बढ़ती मांग पूरी करण रो बूतो है। वे प्रदेश में निवेश और उत्पादन बढ़ावन सारू खनन जुड़िया मुद्दा रा टेम सर निपटारा माथे जोर दीनो। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रा कार्यकारी निदेशक और राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति रो भरोसो दिरायो है। वे बतायो कि दुनिया माए मौजूदा हालात रे कारण उपजी अनिश्चितता रे बावजूद राज्य रा सगला टर्मिनल डिपो और पेट्रोल पंप मथे तेल रो पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता कहो कि घरेलू ग्राहकां सारू रसोई गैस री पूर्ति सामान्य है। वे जनताओं अफवाहां मथे ध्यान नी देवन री अरज कीनी। ई बीचे पहली वाला केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आज झुंझुनू जिला माए जनताओं ईंधन बचावन री अपील कीनी।
2: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रिपोर्टें होती है और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है तो ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र हित में है, तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने कितने कपड़े काफिले में कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था लेकिन मैंने भी काफिले में मना किया, हमारी ज्यादा गाड़ियां साथ नहीं रहे, तो इस दृष्टि से मुझे लगता

0: ही राष्ट्रीय हित में है और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और राज्य सरकार है, उसके ऊपर निश्चित रूप से काम हो गया और आगे भी निश्चित रूप से इसका आप अच्छा देखने को।
1: इन बीच सवाईमाधोपुर जिला में पेट्रोल पंप माथे कम तेल देवन री शिकायतों पाछे नापतौल विभाग रा जांच दल जिला रा 11 पेट्रोल पंप री जांच कर जरूरी कार्रवाई कीनी। आ पेट्रोल पंप माथे कम तेल देवनु मिलिया पाछे संबंधित पंप रा नोजल सीज कर दिया चा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई रा तौरों फौजी सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और माली संकल्प ने एक सग पेश करी चिया। सेना प्रमुख नई दिल्ली में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर मुद्दा माथे राखी जा सेमिनार में बोल रहा है। वे कहो कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत गहराई ताई वार करता थका आतंकी ढांचा ने नेस्तनाबूद करिया पाछे सोच समझ हर एक मकसद रा तहत रोकी चियो। जनरल द्विवेदी कहो कि शांति तय करण, विकास री रफ्तार तेज करण और दुनिया माए माहौल ने आपरा पक्ष माए करण सारू देश री ताकत रो इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ सागे करनो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जनता री आवन जावन री ठोणाऊ लावारिस कुत्ता ने हटावन रा लारला हुकम माए किणी भांत री राहत देवन नटक्यो है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ री सदारत वाली पीठ अदालत रा ई बारा माए नवंबर 2025 माए दिया जया हुकम माए बदलाव री मांग करण वाली अर्जियां आज खारिज कर दीनी। अदालत एड़ा कुत्ता ने आश्रय स्थला माए राखण रा हुकम दीना। अस्पतालां, स्कूलां और दूजी ठोणा कुत्ता कानियों हमला करण रा वाकया रो हवालो देता था का पीठ कहो के हुकम री पालना नी करण वाला अहलकारा ने अदालत री अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई रो सामो करनो पड़ सके है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने बेहतर और पर्यावरण अनुकूल बनावन सारू अगस्त महीना ताई 500 ई बसां चलावन रो प्रस्ताव है। इसारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए आज जयपुर माए समीक्षा मीटिंग राखी जी चिणमाए ई परिवहन सेवावां और बसां री खरीदी रा काम री प्रगति रा बारा माए चर्चा करी जी। मीटिंग माए बताई जियो के अगस्त महीना ताई राजस्थान रोडवेज ने 144 ब्लू लाइन बसां और 30 एसी स्लीपर बसां मुहैया करावन री ई जानकारी दी री जी। बसां चलावन सारू प्रदेश माए 9 नुआ ई बस डिपो ई बनाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे माए जोधपुर मंडल रा रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन रो दौरो कर व्यवस्थावां री जानकारी लीनी। वह स्टेशन परिसर माए साफ सफाई री व्यवस्था, पीवण रा पानी, प्रतीक्षालय और गाड़ियां उभीकरण री ठौड़ समेत मुसाफिरां ने मुहैया कराया जावण वाला न्यारा न्यारा सुविधां रो बारीकी जायजो लीनो। डीआरएम पाली मारवाड़ जोधपुर बीच विंडो ट्रेलिंग री जांच कर न्यारा न्यारा टेसना माथा हिफाजत तो जुड़िया कामा रोई जायजो लीनो। कोटारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व माए जनावरां री हिफाजत और निगरानी तंत्र ने मजबूत बनावन सारू अब सूरज री रोशनी मड़ी बिजली चालन वाला सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। इणु घना जंगलों माए पानी रा कुदरती और इंसान कानियों बनाई जा स्रोता माथे 24 घंटा बिना रुकावट नजर राखी जा सकेला। अहलकारा ने मुजब नुआ कैमराओं वन विभाग रा फील्ड स्टाफ ने जनावरा रा व्यवहार जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी हासिल करण और हमारा इलाका री निगरानी माए मदद मिलेला। प्रदेश री महिलावां ने गर्भाशय रा कैंसर री बीमारियों बचावन सारू चलाया जा रहा टीका लगावन रा अभियान रा तहत कोटपुतली बहरोड जिला रा मेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माथे हाल ताई 65 टाबरियां रा टीका लगा दिया चिया है। अहलकारा ने मुजब गांवाई हलका माए स्वास्थ्य विभाग री टीमा लगातार काम कर रही है। इनु 32 तादाद माए टाबरियां रा टीका लगाया जा रहा है। जयपुर जिला माए हर महीनारी 5 और 20 तारीख ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरा रा सामुदायिक

0: स्वास्थ्य अधिकारियों की ओरों सवेरे 8-9 बजे ताई ग्राम पंचायत और सरकारी स्कूलों में खास शिविर लगाया जावेला। आम आए जनता ने योग प्राणायाम और कसरत रो अभ्यास करायो जावेला। इस आगे ANM और आशा कार्यकर्ताओं की मदद मौसमी बीमारियों बचाओ सही खान पान और साफ सफाई रे बारे में जानकारी दी जावेला। अरब मौसम प्रदेश में पाकिस्तान नू लागते सरहद कने रा हलका शेखावाटी हलका और कोटा संभाग में जबरदस्त लू बाज रही है। आ हलका में पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों है। मौसम विभाग रे मुजब 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान सागर चित्तौड़गढ़ सब 19 ठौड़ रहे हो। इनके अलावा श्रीगंगानगर में 45.9, अलवर में 45.8 और पिलानी में 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। राजधानी जयपुर में आज पारो 43.2 डिग्री सेल्सियस ताई पूग कियो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता एक सप्ताह में राज्य रा आतुणी हलका में सरहद कने तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवण रा आसार है। वे बतायो कि आवता 3-4 दिन ताई प्रदेश रा कुछ हलका में आंधी चालन री संभावना है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है।
0: तेज गर्मी और लू ने ध्यान रखता थका प्रदेश का सगला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में खास इंतजाम करी चिया है। अस्पताल में मरीजा सारू बिस्तर रखने सा गई ORS कॉर्नर ही बनाई चिया है। इस आगे जनता ने गर्मियों बचाव रे बारे में जानकारी दी जा रही है। न्यारी न्यारी थोड़ा सड़कां माथे पानी रो छिड़काव करावन सागे लोगों दोपहरां री भगत जरूरी वेवन री सूरत माई बाहर जावन री अरज करी जा रही है। IPL क्रिकेट होड रा तेत आज जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम माई राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स पीछे मुकाबलो फैला। वो मैच अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे शुरू फैला। अंक तालिका में फिलहाल 5वां नंबर री टीम राजस्थान रॉयल्स ने प्ले ऑफ दौर में पुगण सारू वो मैच जीतनो जरूरी है जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स अंक तालिका में आखिरी छोड़ माथे है। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य सरकार री साफ नीतियां राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रा तौर सामने आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय स्थला माए राखन रा पहली रा हुकम ने पाछो लेवण नट्यो। प्रदेश माए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावण सारू ई साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। और राज्य रा खणखर हलका माए जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। इंसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भ्यो। नमस्कार।
2: FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं और अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा।

0: न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
1: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
0: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा माँ का सभी किसान बहन भाई का ताई आपकी बिनु बहन
3: और बीमा जी बताए
2: घणो घणो राम राम। किसान भाइयों, आज सजीव फोन इन कार्यक्रम को धन छे, यानी कि आपका सवाल को धन और विशेषज्ञ का जवाब देवा को धन। और आज का कार्यक्रम को जो विषय छे वो छे पशुपालन में पशु आहार एवं चारा प्रबंधन को महत्व। और आज का अपना पावना छे डॉक्टर हितेश मुवाल, कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ से। और माँ का स्टूडियो का नंबर तो आपने याद ही होगा, फिर भी आप लोग एक बार और सुन लो और नोट कर लो, 074-32-232-593। तो आप लोग माँ का स्टूडियो का यह नंबर आप फोन करके आज का विशेष से संबंधित प्रश्न पूछ सको छो। कोई आपकी जिज्ञासा हो, पशु आहार से संबंधित कोई आप जानकारी हासिल करबो चाहो, तो आप माँ का स्टूडियो में 074-32-232-593 नंबर आप फोन करके जानकारी ले सको छो। पण आपसे एक निवेदन है किसान भाइयों का, आप नेटवर्क में आकर फोन करेगा तो बहुत बढ़िया रहोगे, क्योंकि उसको कहे चाहे आपकी आवाज़ माँ तक आसानी से और सहजता से पहुँच पाओगे। किसान भाइयों, आज का अपना जो मेहमान है पाहुना है वो आपने बीच पधार चुका है, तो डॉक्टर साहब आपको माँ का किसान वाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। राम राम साहब।
4: राम राम साहब।
2: जशो कि आज आपनो विषय है पशुपालन में पशु आहार एवं चारा प्रबंधन को महत्व। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानबो चाहूँगा कि पशु आहार काई होवे छे, इको काई महत्व होवे छे।
4: धन्यवाद मैडम। आज का जो अपने विषय है भाई, पशुपालन में संतुलित आहार का क्या महत्व है, दाने का प्रबंध कैसे करते हैं, उस विषय पर आपने जो पहला जो सवाल मेरे से पूछा आपने, जो संतुलित आहार या पशु आहार क्या होता है, मुख्य रूप से जो पशुओं के जो आहार में मुख्य जो घटक होता है वो सूखा चारा होता है, हरा चारा होता है, और जो दाना होता है कंसंट्रेट जिसको फीड कहते हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इसमें संतुलित आहार का जो महत्व मैडम इसमें होता है कि जो डेयरी फार्मिंग में या पशुपालन में मुख्य रूप से जो खर्चा आता है 70% खर्चा जो है वो दाने के ऊपर खर्च होता है।
2: डॉक्टर साहब अपनी बात जारी रहेगी, एक किसान भाई अपन से जुड़ रहा है, अच्छा बात करा। हेलो हेलो हेलो, कौन साहब बोल रहे?
5: हेलो,
2: हाँ जी बोलो साहब, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताओ सर।
5: हेलो,
2: हाँ जी नाम बताओ सर।
5: राम गोपाल गुप्ता, बाबूलाल जी राबड़िया, माता जी ने सुनी।
2: हाँ पूछो सर, का पूछ पूछो।
5: ये पूछियो कि संतुलित आहार में पशुओं के लिए ये पोषक ये आता है संतुलित, जो कि बाजार में मिलते ना खाद, ये क्या बोले पशु आहार के लिए ये पोषक, ये सोयाबीन की खली वगैरह ये लाभदायक है कि नहीं है, ये पूछना चाहता हूँ।
2: हाँ सुनो सर।
5: शीतला माता चौक माता जी ने सुन।
2: हाँ धन्यवाद साहब, सुनो।
4: देखिए गुप्ता जी, जो आपने क्वेश्चन जो पूछा है कि जो सोयाबीन की खल होती है जो पशु आहार में महत्वपूर्ण होती है, हाँ ये महत्वपूर्ण होती है। इसमें अपन जो कपास की खड़ है, सोयाबीन के चाहे आप दाने के रूप में काम में ले सकते हो, तिल की खड़ है, ये सारी जो भी खड़ अपने कपास जो खड़ आती है उसको अपन अपने जो फीड होता है, अपना दाना होता है, उसमें पशुओं को अपना आहार के रूप में उसमें काम ले सकते हैं। ये एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स के लिए पशु के रूप में काम करते हैं। प्रोटीन से जो अपने पशुओं में दूध का निर्माण होता है और शरीर का निर्माण भी होता है और बढ़वार भी होती है, इसलिए अपन इसको आहार के रूप में काम में ले सकते हैं।
2: आपने बात चल रही थी पशु आहार की, तो पशु आहार में आप बता रहे काई काई हो चा, तो इका और कशा कशा घटक रहे हो चा।
4: देखो मैडम, महत्वपूर्ण जो पशु आहार में मुख्य रूप से जो घटक होते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है सूखा चारा होता है, दूसरा इसमें अपने हरा चारा होता है, तीसरा इसमें होता है कंसंट्रेट जो फीड बोलते हैं उसको, उसमें अपने जो दाने होते हैं जो फसलों के जो धान के जो दाने होते हैं उनको अपने इसमें शामिल करते हैं, ये मुख्य रूप से इसके घटक होते हैं। और जो संतुलित आहार का जो मैडम महत्व आपने बताया, उसमें पशुओं को अपने दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और पशुओं में जो जो प्रजनन है उसको मजबूत करने के लिए, और जो अपने यदि संतुलित आहार यदि पशु को देते हैं तो उससे क्या कि पशुओं को एक निर्धारित मात्रा के या प्रॉपर जो मात्रा में उसको फीड प्रदान किया जाता है, जिससे कि पशुओं में जो जो बीमारियाँ होती है जो इसके

0: जो संतुलित आहार नहीं दिया जाता है उससे जो बीमारी होती है उसको भी अपन को सही कर सकते हैं।
1: मतलब आपको खेबा को योचा का संतुलित आहार, अच्छा पौष्टिक आहार किसान भाई बहन अगर वहाँ का पशुओं ने देगा तो पशु स्वस्थ रहेगा और दूध भी अच्छा,
0: जी
1: यानी कि
0: जी
1: दूध
0: सर।
1: उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाओगी।
0: हाँ
2: जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, कम लागत में पशु आहार का
1: यहाँ को खेबा को मतलब
2: पौष्टिक
1: छे
2: और चारा किसे
1: कम
2: तैयार किया?
1: लागत में कम पैसा खर्च करके अपना किसान भाई बहन कशा पौष्टिक दानो बना सके, चारों कशा तैयार कर सके।
0: देखिए मैडम, मैंने सबसे पहले आपसे एक चर्चा की थी मैंने कि जो डेयरी फार्मिंग में पशुपालन में मुख्य रूप से जो खर्चा आता है 70% वो दाने पे खर्च होता है। तो इसी के लिए आपने जो अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से कि भी कम लागत में अपने पौष्टिक आहार कैसे तैयार करें, तो पौष्टिक आहार के लिए सबसे पहले अपन को एक अपने जो घरेलू क्षेत्र में या अपने जो घर पर जो पैदा हो रहा है इंग्रेडिएंट उनको अपन को घटक को उनको शामिल करना चाहिए साथ में। दूसरा अपन जो सूखा चारा होता है उसकी अपने उसको एक पौष्टिक बना सकते हैं, जैसे सूखला होता है अपने गेहूं का उसके सूखले को अपन, जैसे मैं एक मेथड बताता हूँ आपको, जैसे 100 किलो अपनी यदि सूखला लेते हैं और 4 केजी यूरिया और 50 लीटर पानी लेके उस पर सबसे पहले अपन यूरिया को पानी के साथ मिक्स करके फिर उसको एक परत बना के सूखे चारे के साथ यदि उसको अपन पानी की तरह छिटकते हैं, छिटकने के बाद में उसको अपन एक कवर पॉलीथीन में उसको रख देते हैं, 7 या 8 10 दिन के बाद में यदि पशु को उसको खिलाते हैं तो वह एक पशु को डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ाता है और पशु के लिए दूध उत्पादन में भी कारगर होता है। दूसरा इसमें मेथड है कि मैडम अपन जो मोलासस होता है जैसे गुड़ होता है उसको भी अपन 2-3 किलो गुड़ लेके 10-15 लीटर पानी में मिला के उसको भी अपन सूखे चारे के साथ खिला के हरा चारा उसमें साथ मिला के यदि पशु को देते हैं तो पशु के संतुलित आहार की तरह वो काम करता है और दूध उत्पादन भी उसमें पशु में बढ़ाता है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक किसान भाई आपन से जुड़बो चाह रहे, आइए बात करा। हेलो हेलो,
3: हेलो,
1: हाँ कौन साहब बोल रहे थे, नाम बताओ
3: हुकम
1: साहब।
3: सिंह चौहान बोलूँ सर, भगवतीपुरा से मिसोल के पास से जय रघुनाथ।
1: हाँ जी, प्रश्न पूछो।
3: ये गेहूं का अभी गर्मी को मौसम चल रही हो, कौन सी बढ़िया तो ये खरीद है कि अपने अच्छी जो संतुलित आहार है उसके लिए पशुओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दो सर।
1: हाँ सुनो साहब,
0: अपने अभी गर्मियों का जैसे मौसम चल रहा है
1: आपने फोन करियो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
0: तो अपने अभी जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे से, तो इसमें गर्मियों के लिए अपन को क्या करना है, इसमें पशुओं को हरे चारा की पूर्ति और पानी की जो ठंडा जल होता है उसको पूर्ति आपको ज़्यादा करनी है क्योंकि पशु गर्मियों में ज़्यादा पानी की मात्रा जरूरत पड़ती है। यदि डिहाइड्रेशन वगैरह ऐसी स्थिति बनती है तो पशुओं को हरे चारे की पूर्ति अपन को ज़्यादा करनी चाहिए और जो कंसंट्रेट जो फीड है उसमें अपने गेहूं का दाना है, मक्की का दाना है, सोयाबीन का है, उड़द का है, ये दाना अपन उसके साथ कंसंट्रेट फीड बना के अपन पशु को खिला सकते हैं और पशु को अपनी इच्छा के अनुसार उसको फीड खिलाना चाहिए। ज़्यादा मतलब ज़्यादा फीड नहीं खिला के क्योंकि आफरा वगैरह की ऐसी स्थिति बन सकती है गर्मियों में, इसलिए अपन एक पैलेटेबल जो अपाचे जो फीड होता है वो पशु को खिलाना चाहिए।
1: उम्मीद चा आपने आपका प्रश्न को जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब आपन बात कर रहे चाहकर कम पैसा खर्च कर किसान भाई बहन कशा चारों तैयार कर सकते हैं और पशुपालन पौष्टिक दानों पौष्टिक चारों देकर कर अच्छा दूध उत्पादन ले सकते हैं, तो वहाँ आप विधियाँ बता रहे चाह तो विस्तार पूर्वक बताओ सा ताकि अपना किसान भाई बहन यहाँ विधियाँ से लाभान्वित होगा और वह भी वहाँ का पशुपालन अच्छो दानों चारों देकर अच्छा दूध उत्पादन ले सकते।
0: देखिए मैडम, सबसे पहले जैसे अपन आपने कम लागत का जैसे पौष्टिक चारा तैयार करने के लिए मेरे को बोला, तो सबसे पहले जो अपने घर पे या अपने फार्म पे जो उत्पादन हो रहा है उन्हीं दाना को अपने साथ में ले सकते हैं और जो अपने घर से जो वेस्ट मटेरियल जैसे निकलता है उसको भी अपन फीड में काम में ले सकते हैं साथ में। दूसरा इसमें जैसे मैंने आपने पहला मेथड आपको बताया जैसे सूखला होता है तो उसमें क्या कि जो क्रूड प्रोटीन होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसको अपन यूरिया के साथ ट्रीट करके उसको एक अच्छा पैलेटेबल और पाच्य वो भोजन पशु के लिए बना सकते हैं। दूसरा मैंने मोलासस जो गुड़ के साथ में मैंने पशु के साथ बताया वो आप उसको कर सकते हैं। तीसरा मैंने मेथड बताया कि आप सूखा चारा होता है उसको हरे चारे के साथ में मिक्स करके उस पशु को खिला सकते हैं। चौथा मेथड इसमें मैडम होता है कि जैसे सूखा चारा होता है, कई बार पशुपालक क्या होता है कि सूखे चारों को जैसे मक्की है, ज्वार है या जो मल्टीकट जो बाजरी आती है उसको काट के सीधा पशु को डालते हैं, तो ऐसा नहीं करें, पशुपालक उसको एक बार चाप कटर से चॉपिंग करके सूखे चारे के साथ मिक्स करके उसको खिलाते हैं तो पशु के क्या पानी की मात्रा भी बढ़ती है और दूध उत्पादन भी उससे बढ़ता है, तो ऐसा पशुपालक अपन कर सकते हैं।
1: तो यहाँ विधियाँ को प्रयोग सभी मौसम में एक ही तरीका से कर सकते हैं।
0: ये विधियाँ सभी मौसम के लिए सूटेबल है, इन विधियों को काम में लेके एक अच्छा डेयरी मॉडल एक अच्छा पशुपालक अपन कर सकते
2: सर
0: हैं।
2: हमारा क्वेश्चन है कि पशु आहार दुधारू पशुओं एवं

0: सामान्य पशुओं के लिए कैसा होता है?
1: इसमें देखो, जो पशु आहार अपन पशु को देते हैं तो वो क्या है कि पशु को उसकी उम्र, उसकी वजन और उसकी जो ब्यांत है या जो ड्राई पीरियड है, उसके अलग अलग फीड, इसमें अलग अलग फीड का चार्ट बनता है पशु के लिए। तो उसके लिए पशु को, जैसे आपने बताया कि मतलब जो पशु को, जो प्रेग्नेंट जो होती है जानवर, उसके लिए अलग दाना होता है। जैसे मैंने बताया आपको, उसको क्या है कि जैसे एक गाय को, जैसे प्रेग्नेंट गाय है या उसका 400 से 500 किलो जैसे बॉडी वेट या शरीर का भार है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे उसका, मैं आपको एक फीडिंग उसका चार्ट बता देता हूँ आपको। जैसे एक गाय को एक दिन में लगभग 20 से 25 किलो हरा चारा चाहिए और 5 से 6 किलो उसको सूखा चारा चाहिए, और उसको किलो से 1.5 किलो या 2 किलो तक उसको कंसंट्रेट जो दाना होता है वो चाहिए होता है। और उसमें आप 40 से 50, 50-60 ग्राम आप मिनरल मिक्सर मिला सकते हो, और 30 से 40 ग्राम आप सेंधा नमक जो होता है उसको साथ मिक्स करके उसको फीड को खिला सकते हो, ये होता है। और दूसरी, आपने जैसे पूछा कि जो सूखा या ड्राई जो जानवर होता है जो दूध नहीं देता है, उसको भी अपने दाना के साथ में आप प्रबंध कर सकते हैं। उसमें अपन मात्रा जो सूखे चारे की वो सेम रखते हैं, हरे चारे की सेम रखते हैं, अपन उसमें दाने की मात्रा जो अपन कम कर देते हैं, ये इसमें अपने इस करके अपन उसको प्रबंध कर सकते हैं।

0: 50-60 ग्राम आप मिनरल मिक्सर मिला सकते हो और 30 से 40 ग्राम आप सेंधा नमक जो होता है उसको साथ मिक्स करके उसको फीड को खिला सकते हो, यह होता है। और दूसरी आपने जैसे पूछा कि जो सूखा या ड्राई जो जानवर होता है जो दूध नहीं देता है उसको भी अपने दाना के साथ में आप प्रबंध कर सकते हैं। उसमें अपन मात्रा जो सूखे चारे की वो सेम रखते हैं, हरे चारे की सेम रखते हैं, अपन उसमें दाने की मात्रा जो अपन कम कर देते हैं ये इसमें अपन इस करके अपन उसको प्रबंध कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब एक किसान भाई अपन से जुड़ पूछ रहा है। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ कौन साहब बोल रहे थे, नाम बताओ साहब।
2: वो गांव खोर से बोल रहे हो, कलराम के।
1: हाँ जी पूछो, काहे पूछो चाहो।
2: मैं खोर हो कोई जैसे यूरिया खाद की, क्यों तो यूरिया खाद पर जानवर का दिया कोई दुख नहीं दे।
0: देखिए ये जो यूरिया अपन यूज लेते हैं उसमें क्या कि सबसे पहले अपन को जैसे मैंने 4 किलो यूरिया बताया और 100 किलो जैसे गेहूँ का सूखला होता है वो लेना है आपको, और 50 लीटर 50 लीटर देखो 100 किलो तो सूखला लेना है और 4 किलो यूरिया लेना है और 50 लीटर पानी लेना है। इस पानी को लेने के बाद सबसे पहले आपको बाल्टी में यूरिया को घोलना है पूरा पानी के साथ में। 50 लीटर जो पानी आपने लिया उसमें घोलने के बाद में आपको क्या करना है कि पहली एक त्रिपाल बिछा के उसके एक लेयर पहले एक परत बनानी है चारे की, फिर उसके ऊपर आप वो जो आपने जो घोल तैयार किया उस घोल को छिड़कना है, फिर एक लेयर और तैयार करनी है उस पर घोल को छिड़कना है। ऐसे करके 5 से 6 लेयर में आपको 100 किलो आपने जो सूखला लिया है उसको एक पूरा छिटक के फिर उसको एक पॉलीथीन से पूरा कवर करके 7 या 8 या 10 दिन के लिए उसको गर्मियों में रखना है और सर्दियों में उसको 15-20 दिन उसको कवर करके रखना है। और फिर जब आप कवर करके उसको 10 दिन बाद में यदि काम में लेना चाहते हो तो सबसे पहले उसको खोल के 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए उसको खुला रखना, क्योंकि उसमें यूरिया से अमोनिया गैस बनती है तो वो अमोनिया गैस उसमें से निकल जाती है। और फिर आप यदि पशु को वो भी एक साथ नहीं डालना है, पशु को आप धीरे धीरे 6-7 दिन तक उसको आदत में डालना है और फिर उसको पशु को अपन खिला सकते हैं। जी हाँ, पशु को अपन सरसों की खल दे सकते हैं, इससे दूध उत्पादन वगैरह बेहतर होता है। जी
1: ठीक है, आपने आपका प्रश्न को उत्तर मिल गया होगा, धन्यवाद फोन करवा के लिए। बहुत बहुत डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया प्रश्न अपना किसान भाई ने आपसे पूछो, क्योंकि कई लोग इनमें संशय में रेवच है। तो अब आप बात करा कि जो संतुलित पशु आहार की आपने बात चल रही है उनका और कई कई लाभ है।
0: देखो मैडम, संतुलित पशु आहार यदि अपन पशु को खिलाते हैं तो सबसे पहले तो उसका इम्पोर्टेंट जो भाग होता है उसका दूध उत्पादन पशु का बढ़ता है। दूसरा जो उसमें अपने जो रिप्रोडक्शन या जो प्रजनन से संबंधित जो होता है, एक तो जानवर जब आप यदि संतुलित उसको फीड खिलाते हैं तो टाइमली एक तो पशु हीट में आएगा और टाइमली वो कंसीव होगा और टाइमली वो अपनी ब्यांत देगा। तो तीसरा इसमें होता है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित होता है, यदि अपन संतुलित आहार अपने पशु को खिलाते हैं तो ज़्यादा बार बार अपने डॉक्टर को नहीं बुलाना पड़ता है और अपना पशु स्वस्थ रहता है। क्योंकि जो मैडम संतुलित आहार से अपने 2-3 बीमारियां हैं जो अपने आप ठीक हो जाती हैं, जैसे मैंने दुग्ध जबर बताया, जो पशु ब्याती है उसमें बीमारी होती है वो यदि आप संतुलित आहार खिलाते हो तो वो बीमारी नहीं होती। एक कीटोसिस बीमारी होती है, अपचय बीमारी होती है, उसको भी अपन संतुलित आहार से अपन ठीक कर सकते हैं। ये है संतुलित आहार से पशु स्वस्थ भी रहता है और दूध उत्पादन भी लगातार बढ़ा हुआ रहता है उसमें। ये
1: यानी आपको खेबा को मतलब चाहे अगर संतुलित आहार किसान भाई बहन देवच है वहाँ का पशुआना तो वहाँ का जो पशु छो वह स्वस्थ भी रहेगा, दूध भी अच्छा देगा और कोई बीमारी बीमारी न होगी। तो डॉक्टर साहब अब यहाँ लेवा अपन एक अल्प विराम।
3: जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
4: उफ, ये तेज चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के झोंके,
5: ऐसे में बच्चों को बाहर जाने से कोई कहां तक रोके?
4: मम्मा सर दर्द।
6: अगर बाहर से आने पर बच्चों में तेज सर दर्द, बेहोशी, अधिक पसीना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सांस या धड़कन तेज होना, उल्टी या बुखार जैसे लक्षण नजर आए तो ये लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत बच्चों को छांव में लाएं, कपड़ों को ढीला करें, पंखे की हवा तेज करें, बच्चे को ठंडा पानी पिलाएं और उल्टी करवट लेटाएं। कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं।

0: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
1: किसान वाणी कार्यक्रम में किसान भाइयों एक बार आपको फिर से स्वागत है। सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहा है और आज को जो विषय है पशुपालन में पशु आहार एवं चारा प्रबंधन को महत्व है। और वहाँ का स्टूडियो का नंबर है 074-32-232-593। तो आप यह नंबर आप फोन करके पशु आहार और चारा प्रबंधन का विषय में जानकारी ले सको छो। तो डॉक्टर साहब आपन बात कर रहे था पशु आहार की, अब पशुओं के लिए आपन चारा की बात करा तो यो चारो काई हो छ, इको काई महत्व छ?
2: देखिए मैडम, जो आपने चारे का क्वेश्चन पूछा है तो चारे में मुख्य रूप से एक तो सूखा चारा होता है जिसको अपन गेहूँ से है भूसा तैयार करते हैं, सोयाबीन का भूसा है, मसूर का भूसा है, सूखे चारे के रूप में होता है। दूसरा इसमें होता है हरा चारा। हरे चारे के रूप में अपने बरसीम का ले सकते हैं, रिचके का ले सकते हैं मैडम, मक्की का अपन ले सकते हैं, बाजरे का अपन ले सकते हैं और इसमें ज्वार का अपन चारा ले सकते हैं। यह हरे चारे के रूप में काम करता है। तो इसका अपन क्या करते हैं मैडम, सूखे चारे के रूप में जैसे मैंने आपको गेहूँ का सूखला वगैरह ये बताया, ये क्रॉप जो फसल अपने हार्वेस्ट होने के बाद में इसको एकत्रित करके अपन पशु के लिए घर पर रखते हैं। दूसरा जब अपन बात करते हैं हरे चारे के लिए तो मैंने जैसे गेहूँ है इसका, जैसे ओट भी है, ये मेथी का है, इसको हम सर्दियों में लगा सकते हैं, रिचका है, बरसीम है, ये सर्दियों में लगाने वाले हरे चारे के जो मुख्य हैं। और दूसरा इसमें अपन जैसे अभी मक्की का बताया मैंने, बाजरे का जो चरी मल्टीकट जो चारा आता है वो अपन गर्मियों में लगा सकते हैं पशुपालकों इस पशु के लिए।
3: चारा के प्रकार बताइए सर, प्रमाणिक पशुओं के प्रबंधन के लिए क्या है?
2: चारे के मैंने अभी बताया आपको, सूखे चारे के बारे में बताया, हरे चारे के बारे में बताया मैंने आपको और फीड कंसंट्रेट के बारे में मैंने बताया आपको। ये तीनों अपन समावेश करके पशुपालन को बेहतर बना सकते हैं।
1: तो जब ये चारा को प्रबंधन अपना पशुपालक भाई करे चाहे तो उस समय काई सावधानी रखवा की आवश्यकता छे क्या?
2: देखिए मैडम, इसमें जब अपन सावधानी मुख्य रूप से यही होती है कि पशुपालक के जब अभी जैसे अपन सूखले का चारा इकट्ठा कर रहे हैं, किसान अपने स्टोरेज में पशुपालकों पशु के लिए रख रहे हैं, तो उसमें क्या करना है अपन, जैसे थोड़ा बहुत यदि पुराना सूखा चारा यदि बचा हुआ है तो उसको बचा के रखें, क्योंकि जब हरा चारा सूखा चारा जब अपन नया चारा ला के स्टोरेज करते हैं तो उसको जो पुराना चारा और नए चारे को साथ में मिला के 6-7 दिन तक उसको एक साथ खिलाएं, क्योंकि आप एकदम नया चारा डालते हो तो उसकी पशु की आदत में नहीं होता है तो अपच वगैरह ऐसी डिहाइड्रेशन वगैरह ऐसी स्थिति बन सकती है। तो एक तो मुख्य रूप से ये सावधानी आपको रखनी चाहिए। दूसरा अपने हैं कि अपने जो हरा चारा है उसको सूखे चारे के साथ में काट के उसको मल्टी कटिंग करके उसकी उसको पशुओं के साथ खिलाने से भी बेहतर होता है, जिससे अपना चारा हरा चारा है वो वेस्ट नहीं होता है।
1: बहुत ही बढ़िया आपने बात बताई कि ये सावधान है अपना किसान भाई बहन रखेगा तो वहाँ का पशु बहुत ही अच्छा तरीका से आहार ले सके, चारा को उपयोग कर सके।
3: पशुओं के चारे का प्रबंधन कैसे करें?
2: पशुओं का जैसे चारों का प्रबंधन मुख्य रूप से ये सूखे चारे का मैंने बताया, वो जो सूखला मुख्य रूप से होता है, हरे चारे का मैंने अलग अलग क्रॉप आपको बताई, मैंने सर्दियों में अलग से क्रॉप जो बरसीम वगैरह रिचका वो लगा सकते हैं और गर्मियों में मुख्य रूप से हरे चारे की जरूरत पड़ती है क्योंकि सब जगह हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, जहाँ पानी की सुविधा होती है वहाँ हरा चारा आप लगा सकते हैं, जैसे मल्टीकट जो बाजरी होती है वह लगा सकते हैं, मक्की अपन लगा सकते हैं, उसको अपन काम में ले सकते हैं यदि अपने पास सरप्लस यदि ज़्यादा हरा मात्रा उपलब्धता हो, यदि अपने पास ज़्यादा उपलब्धता में हो तो उसका अपन साइलेज भी उसका बना सकते हैं और पशुओं के लिए अपन काम में ले सकते हैं।
1: ये साइलेज कहीं हो
2: जाए? साइलेज मैडम जो जैसे मक्की का और ज्वार का है, इनका मुख्य रूप से साइलेज का निर्माण करते हैं अपन। जैसे मक्की का क्या मुख्य रूप से जैसे 55-60 दिन की यदि फसल हो जाती है, फूल आने की स्थिति में अपन उसको फसल को एक साथ हरी अवस्था में काट के उसको चॉपिंग करके और एक पोली बैग जो होते हैं जो इसके साइलेज बैग होते हैं उसके साथ में उसको बैग को अपन उसको भर के और अपन उसको 40-45 दिन तक उसको एयर टाइट करके रखते हैं और जब पशु जो अपने चारा जो अपने एयर टाइट किया था वो हवा नहीं लगनी चाहिए, यदि मैडम हवा उसमें लग जाती है तो फफूंद वगैरह उस पर पड़ना चालू हो जाती है और चारा खराब हो जाता है। यदि वो पशु को अपन खिलाते हैं तो पशु बीमार हो सकता है अपना, तो अपन को उसको एयर टाइट अपन को रखना, हवा नहीं घुसनी चाहिए। बाद में अपन यदि 45-55 दिन या 60 दिन बाद में जब अपने पास हरे चारा की उपलब्धता नहीं रहती है तो उसको अपन साइलेज के एक पशु के आचार के रूप में उसको पशु को अपन खिला सकते हैं। ये होता है साइलेज होता है, इसमें हे का निर्माण भी होता है, जैसे सूखा चारा होता है उसको चॉपिंग करके अपन एक हे का निर्माण भी अपन कर सकते हैं। साइलेज में जो पानी की मात्रा लगभग 60-70% तक होती है और हे होता है जो सूखा चारा होता है उसमें पानी की मात्रा 10-15% तक होती है।
1: तो एक साथ ही साथ संतुलित चारा का बारे में भी

0: बताओ सर।
1: संतुलित चारा, जैसे सबसे पहले मैडम अपन जो पशु का मैंने बताया आपको, पशु क्या कि अपने बॉडी वेट का 3 से 4% तक ड्राई मैटर कंज्यूम करता है, तो ड्राई मैटर के रूप में अपन शुक्ला गेहूं का है, अपने इसका सोयाबीन का है, या अपने मसूर का है, वो चने का है, वो अपन काम में ले सकते हैं। और दूसरा हरे चारे का अपन जैसे पशु को देते हैं, तो हरे चारे का मैंने बताया, उसमें भी अपन पशु के आहार में अपन समावेश कर सकते हैं। फिर तीसरा इसमें आता है कंसंट्रेट फीड होता है, जैसे कंसंट्रेट फीड अपने 100 kg का आदि कंसंट्रेट फीड का अपन निर्माण करते हैं पशु के लिए, तो उसमें मुख्य रूप से जो मक्का है उसको कृषि करके या उसका दाना बना के उसको 30 किलो तक काम में ले सकते हैं। दूसरा अपने पास जैसे ये ज्वार आती है या बाजरा आती है, उसको भी अपन 20 से 25 किलो उसमें समावेश कर सकते हैं। और अपनी जो खड़ियाँ होती है, जैसे कॉटन की कपास की खड़ हो गई, या सोयाबीन की, इसकी सोयाबीन भी अपने साथ में ले सकते हैं, और तिल की खड़ हो गई, या अपने जैसे सरसों की खड़ हो गई, इसको भी अपने 10 से 15 किलो उसमें चारे में, उसमें दाने में मिक्स कर सकते हैं। फिर अपने जैसे उड़द होती है 4-5 किलो, वो भी ले सकते हैं, और सोयाबीन होती है 6-7 किलो, वो भी ले सकते हैं अपन इसमें करके मैडम। फिर उसके 100 किलो का अपन, 100 किलो पर अपन 2 किलो अपन मिनरल मिक्सर उसमें मिला सकते हैं, और 100 किलो पर 1 किलो अपन उसमें जो सेंधा नमक या जो साधारण नमक होता है वो मिला सकते हैं। इसमें एक पूरा ये के डेयरी एनिमल्स के लिए एक पूरा चार्ट बताया मैंने, वो अपन पशु के लिए काम में ले सकते हैं। फिर 100 किलो का अपन चार्ट तैयार करने के बाद में पशु को अपन जो मात्रा, जैसे 2 से 3 किलो अपन देते हैं, वो दे सकते हैं। वो दुधारू पशुओं में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि एक गाय को यदि अपन 3 लीटर दूध पे 1 किलो अपन यदि वो दाना खिलाते हैं, तो वो अपने लाभदायक रहता है। जैसे जैसे दूध बढ़ता है अपने दाना की मात्रा बढ़ानी चाहिए। यही भैंस में अपने 2.5 किलो दूध पे 1 किलो अपने दाने की मात्रा देते हैं, जैसे 5 किलो या 10 किलो दूध दे रही, तो 3 किलो या 4 किलो उसको दाना पर डे खिलाना जरूरी होता है।
0: हाँ जी सर, ये एक मेरा क्वेश्चन, पशुओं के लिए संतुलित आहार एवं चारा का क्यों आवश्यक है?
1: संतुलित आहार सर इसीलिए आवश्यक है, क्योंकि संतुलित आहार का मतलब यह होता है कि पशु को एक जो जरूरत है उसके जरूरत के अकॉर्डिंग, या जो एक फिक्स निर्धारित मात्रा होती है पशु के लिए, उसके अकॉर्डिंग यदि दाना अपन देते हैं, तो संतुलित आहार से एक फायदा होता है कि अपन यदि पशु को एक प्रॉपर चार्ट के या प्रॉपर संतुलन से यदि पशु को अपन आहार खिलाते हैं, तो उसमें क्या कि पशु वेस्ट भी नहीं करता है, और जो अपन पशुपालक भी यदि चारा खिलाता है तो वो संतुलित आहार यदि बना के खिलाता है, तो उसको भी एक लो कॉस्ट फीड तैयार करके पशु को खिला सकता है, और अधिक खर्चा भी नहीं आता है, और इससे पशु स्वस्थ भी रहता है।
0: तो यह तो बहुत ही बढ़िया बात है कि पशुपालक भाई चारा प्रबंधन करके पशुओं से बहुत अच्छा लाभ ले सके जाए। अब जैसा कि आपने सूखा चारा की बात बताई, तो सूखा चारा में भी पोषण युक्त बना सके जाए, उनका काई उपाय है?
1: मैंने पहले मैडम आपको बताए थे मैंने, जैसे यूरिया से अपन ट्रीटमेंट उसको कर सकते हैं। दूसरा मेथड जैसे मैंने बताया आपका, गुड़ के साथ पानी को मिला के उसको भी अपन ट्रीट कर सकते हैं। फिर अपन इसको यदि हरा चारा अपने पास है तो उसको सूखे चारे के साथ मिला के उसको खिला सकते हैं। ये 4 से 5 प्रकार के मेथड हैं जिसको अपन पशु के जो सूखा चारा होता है उसको अपन एक सुपाच्य बना सकते हैं।
0: तो ये जो चारा की आपने बात बताई, सूखो चारो हरा चारो, तो इका चारों या दाना का उत्पादन के लिए कई सरकारी योजना भी कारगर छ, या सरकार भी कोई अनुदान देवे छ, या कोई सरकारी सहायता भी मिल सके
1: इसमें
0: छ
1: मैडम?
0: आपको?
1: मुख्य रूप से जो अपने कृषि विभाग है वो मिनी किट्स वगैरह जो फोडर प्रोडक्शन के लिए, जो चारा उत्पादन, जो हरा चारा उत्पादन है उसके लिए मिनी किट्स भी बांटती है, उससे पशुपालक अपना फ़ायदा ले सकते हैं, और उसका अपन बीज भी तैयार कर सकते हैं। दूसरी इसमें मैडम एक पशु जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, जो राष्ट्रीय पशु उत्पादन के जो गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना चल रही है, उसमें एक स्कीम्स है जिसमें मैडम अपन एक फीड की अपन फैक्ट्री स्थापित उसमें कर सकते हैं, एक फोडर ब्लॉक का अपन एक निर्माण उसमें कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक गवर्नमेंट के द्वारा इसमें 50% सब्सिडी का ऑप्शन रहता है, और उसमें अपन जैसे फसल काटने के लिए रीपर वगैरह है, फीड का जो दाने का या इसके जो हरे हरे चारे का, सूखे चारे का जो बाइंड करने के लिए होती है वो मशीन अपन उसमें खरीद सकते हैं। दूसरा इसमें जो साइलेज बनाने की जो मशीन आती है, पॉली बैग वगैरह सो भी पैकिंग करने के आते हैं, वो सारा उसे अपन सब्सिडी के थ्रू या स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट से परचेज कर सकते हैं, और एक यूनिट अपन चारे की बना सकते हैं। ये स्कीम्स हैं।
0: डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण और सारगर्भित जानकारी आज अपना किसान भाई बहन का बताई थी। फिर भी पशुपालन में पशु आहार एवं चारा प्रबंधन का महत्व से संबंधित कोई बात रह गई हो, कोई बात छूट गई हो, तो आप सलाह का तौर पर, सुझाव का रूप में, मार्गदर्शन स्वरूप किसान भाई बहन और पशुपालक भाई काय की बचाओगे?
1: सबसे पहले मैडम मैं अपने पशुपालकों को एक सुझाव देना चाहूँगा कि चारा अपने यदि संक्षिप्त रूप से उसको स्टोरेज करें, और जो सड़ा गला चारा हो, चाहे बारिश से भीगा हुआ हो या फफूंद लगी हुई हो, ऐसा चारा अपने पशुओं को नहीं खिलाएं, क्योंकि उससे मैडम यदि पशु को अपन ये चारा देते हैं तो आफरा वगैरह की ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि गर्मी में आफरे की स्थिति ज़्यादा रहती है जिससे पशु मर जाता है, तो वो कर सकते हैं। दूसरी अपने सलाह है कि मैडम जैसे अभी नया चारा सूखा सूखला जो आ रहा है गेहूँ का, वो

0: एकदम पशु को निकलाएं, पुराने जो चारा उसको बचा के रखें, उसके साथ मिक्स करके 6 से 7 दिन जो पीरियड होता है उसमें उसकी आदत डालें, वो चारा उसको खिला सकते हैं अपन। तो तीसरा इसमें होता है कि मैडम जो गर्मियों में अभी जो सलाह देख के रूप में अपन दे सकते हैं कि अपन जो जानवरों का जो फीडिंग का जो टाइम है वो एक फिक्स रखें, सुबह जल्दी या शाम को फीडिंग कराए, दिन में फीडिंग नहीं कराए। और दूसरी बात इसमें पशुओं को अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है तो उसमें अपन ठंडा पानी की व्यवस्था करें और ये अपन पशुओं को कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक मेथड और होता है कि मैडम अपन जो चारे का वेस्ट को बचा, यदि चारा ज़्यादा वेस्ट करता है पशु तो उसको यदि सूखा चारा अपने पास है, हरा चारा अपने पास उपलब्ध है तो उसको काट के चॉपिंग करके यदि साथ मिक्स करके खिलाते हैं तो पशु वेस्ट भी कम करता है और अपना खर्चा भी कम आता है। ये सुझाव मैं दे सकता हूँ।
1: तो यानी कि अबार गर्मी में विशेष रूप से ध्यान रखवा की आवश्यकता है किसान बहन भाई आना, पशुपालक भाई आना, क्योंकि इस समय गर्मी ज्यादा पड़ रही है। तो आपका ही पूछा होगा
0: इसमें मैडम, गर्मियों में सबसे पहले पशु पालकों के लिए मैं इसमें गर्मी में जो प्रबंधन होता है मुख्य रूप से वो अपन को पशु को दिन में गर्मी से या ताप से उसको बचाना है, क्योंकि इसमें यदि ज़्यादा पशु का जो शरीर में जो पानी की जो मात्रा होती है 70 से 75% तक ये पानी के कंपोनेंट से बना होता है, फिर उसमें यदि गर्मी ज़्यादा या ताप ज़्यादा हो जाता है तो पशु में क्या डिहाइड्रेशन वगैरह जैसी अपच वगैरह जैसी स्थिति का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए पशु को एक ठंडी छाया में या ठंडे शेड में उसको बांध के रखें और दिन में बाहर नहीं निकालें, शाम में सुबह भी उसको चारा खिलाएं और शाम सुबह उसको दाना प्रबंध उसको करना चाहिए। दूसरी इसमें जो अपनी यदि शेड अपना बना हुआ है तो उसके चारों तरफ टाट पट्टी लगाए, पानी का छिड़काव करें और पशुओं को शाम और सुबह दोनों टाइम पशुओं को नहलाएं, जिससे कि पशुओं में डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति नहीं बने और यदि पशु ब्याया हुआ है तो उसका भी दूध उत्पादन निरंतर बना रहता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप किसान बहन भाइयों को बताई थी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब।
1: किसान भाइयों, आभार, आपने सुनी चारों प्रबंधन का बारा में और पशु आहार का बारा में। और अब किसान वाणी कार्यक्रम समाप्ति की ओर छ, तो मैं आपसे फिर मिलूंगा नई जानकारी और नया विषय के साथ। तब ताई आपकी बीनु बहन और आपका भाई
2: भीमा जी को
1: दो आज्ञा। राम राम सा।
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी FM 103.2 MHz पर। आप थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त जय माला।

0: नेहा कक्कड़ की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम पॉप एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: अरे अब तक घंटी नहीं बजी, 10 बज चुके हैं, अब तक तो घंटी बज जानी चाहिए। क्या बात है, कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है आज?
1: अरे नहीं यार, सवाल ही नहीं उठता, मैंने खुद प्रिंसिपल को ऑफिस में जाते देखा है।
0: फिर क्या बात है, आओ ऑफिस में चलकर शर्मा से पूछे।
1: हाँ हाँ चलो।
0: शर्मा जी क्या बात है, 10 बज चुके हैं, कॉलेज की घंटी नहीं बजेगी आज?
2: क्या बताऊं, कहां मर गए आज सबके सब चपरासी। आप सब लोग अपनी अपनी क्लास में चलिए, मैं जल्दी से घंटी बजवाता हूँ।
1: अच्छा ठीक है।
2: सर रामरथ अभी तक नहीं आया, वक्त हो गया है, घंटी कौन बजाएगा?
3: हाँ शर्मा जी वक्त हो गया है, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी, मगर रामरथ अब तक क्यों नहीं आया? खैर वासुदेव को कहिए कि घंटी बजा दे।
2: वासुदेव ने तो 2 दिन की छुट्टी ली है सर।
3: तो फिर साइंस लेबोरेटरी के फरीद को बुलाकर जल्दी से घंटी बजवाइए।
2: सर मालूम हुआ है कि फरीद भी आज नहीं आया।
3: ओफो, क्या कॉलेज के सभी चपरासियों ने हड़ताल की है? राम रख नहीं, वासुदेव नहीं, फरीद नहीं, तो कोई और होगा, किसी से भी बजवा लीजिए घंटी।
2: सर मैं किससे कहूँ और क्या कहूँ, मेरी सुनता ही कौन है? हरनाम सिंह से कहा था कि भैया जरा घंटी बजा देना, तो कहने लगा कि मेरा काम सिर्फ ऑर्डर घुमाना है, घंटी बजाना नहीं। पर आप ही बताइए प्रिंसिपल साहब मैं क्या करूं?
3: यही तो कमी है शर्मा जी आप में, रामरख है नहीं, दूसरा कोई चपरासी घंटी बजाता नहीं, ऐसी हालत में आपके सामने दूसरा कोई हल नहीं है,

0: सर आप भी मुझ पर ही खफा होने लगे, मुझे रास्ता तो बताइए कि मैं क्या करूं।
1: अरे भरे आदमी, इसमें करना ही क्या है, 10 कप के बच चुके हैं, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी। जाइए आप ही जल्दी से घंटी बजा दीजिए।
0: क्या क्या मैं बजाऊं घंटी?
1: क्यों, क्या हो गया? अगर आज घंटी आप ही बजा देंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा?
0: सर आज तक मैंने अपनी साइकिल की घंटी के सिवाय दूसरी कोई घंटी नहीं बजाई।
1: आप भी हद करते हैं शर्मा जी। अच्छा जाइए काम करिए अपना, मैं बजा देता हूँ घंटी।
0: नहीं नहीं नहीं सर, आप बैठिए मैं बजाता हूँ घंटी, मेरे होते हुए भला आप तकलीफ करेंगे?
1: तो फिर जाइए और जल्दी से घंटी बजा डालिए।
0: जाता हूँ सर जाता हूँ, बस एक ख्याल आता है सर, वरना अब तक तो मैंने कब की घंटी बजा दी होती।
1: कह डालिए कौन सा ख्याल है वो?
0: आप तो जानते ही हैं सर कि मेरा साला इसी कॉलेज में पढ़ता है,
1: तो
0: अगर घंटी बजाते हुए कहीं उसने मुझे देख लिया और घर जाकर अपनी बहन को कह दिया
1: तो क्या होगा?
0: तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा सर।
1: वो कौन सी मुश्किल है जिसमें आप फंस जाएंगे?
0: अब क्या अर्ज करूं सर, घर जमाई क्या बन गया हूं, मैंने तो गुलामी ही लिख कर दे दी है।
1: तो अब आप दफा हो जाइए, मैं खुद ही घंटी बजा लूंगा।
0: नहीं नहीं नहीं सर, आप बैठिए सर, मैं जाता हूँ बजाता हूँ घंटी।
2: मैं अंदर आ सकती हूँ सर?
1: हाँ हाँ आओ आओ, क्या बात?
2: सर मैं यशपाल से तंग आ गई हूँ, जरा उसे समझाइए, अगर मेरे पिताजी को उसकी हरकतों का पता लग गया तो बहुत बुरा होगा, उनका गुस्सा बहुत खराब है।
1: क्या हुआ आखिर, कुछ कहो तो।
2: सर वो प्रेम दीवाना है, उसने दुनिया भर में डंका पीट दिया है कि मैं उसे प्रेम करती हूँ, जबकि मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है।
1: मगर उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना सब करने और कहने की?
2: हिम्मत का क्या है सर, आजकल कोई भी लड़की किसी लड़के से जरा हंसकर बोल ले तो बस वो समझता है कि लड़की उसके प्रेम में पागल है। सचमुच ये लड़के बड़े दीवाने होते हैं।
1: तो मतलब ये हुआ कि तुम भी यशपाल से हंसकर बोल चुकी हो, हाँ?
2: इसमें बुराई ही क्या थी सर, एक दिन पार्क में मैं अपनी बहन और जीजा जी के साथ बैठी थी, यशपाल भी उधर आ निकला, मैंने सहपाठी समझकर अपनी बहन और जीजा जी से उसका परिचय करवाया। उस दिन के बाद उसने एक दो बार मुझसे किताबें मांगी, मैंने दे भी दी, बस इसी से उसको गलतफहमी हो गई कि मैं उसे प्रेम करती हूँ। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या कसूर है?
1: पर आज क्या बात हुई, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आई हो?
2: आज तो बात बहुत बिगड़ गई है सर, मैं कॉलेज के फाटक में घुसी ही थी कि किसी लड़के ने मुझे कुछ कहा, इस पर यशपाल उस पर बिगड़ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मेरे बारे में इस तरह की लड़ाई झगड़े हों ये अच्छा नहीं है सर, इसमें मेरी बदनामी होती है।
1: कहाँ है वो लोग?
3: वो लोग फाटक के पास झगड़ रहे हैं।
1: अच्छा तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं अभी देखता हूँ। क्या तमाशा लगा रखा है, जाओ अपनी अपनी क्लासों में। यशपाल तुम मेरे साथ ऑफिस में आओ। सुनिए शर्मा जी, ड्राइवर से कहिए कि सुरेंद्र को जल्दी से मेरी कार में अस्पताल ले जाए।
0: जी बहुत अच्छा सर। अरे कहाँ? अरे वासुदेव, ओहो वासुदेव भी छुट्टी पर गया है।
1: तो क्या बात थी यशपाल?
4: बात कुछ खास नहीं थी सर, सुरेंद्र मेरे व्यक्तिगत मामले में दखल दे रहा था, मैंने उसे मना किया तो वो गर्म हो गया, बात बढ़ गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई।
1: हाथापाई भी ऐसी कि तुमने सुरेंद्र का सिर ही फोड़ दिया? ऐसा क्या व्यक्तिगत मामला था तुम्हारा कि उसे दखल देने की जरूरत पड़ी और तुम्हें उसका सिर फोड़ने की जरूरत आ पड़ी?
4: कैसे बताऊं सर, शर्म आती है।
1: बहुत खूब, शर्म आती है और वो भी तुम्हें, अपने सहपाठी का सिर फोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई और अब वजह बताते हुए तुम्हें शर्म आ रही है। वक्त खराब मत करो मेरा, बोलो क्या बात थी, जल्दी बोलो।
4: सर वो मेरे प्राइवेट मामले में दखल दे रहा था, ये मुझे सहन नहीं हुआ।
1: आखिर क्या प्राइवेट मामला है तुम्हारा, जवाब दो।
4: सर सुरेंद्र मेरे और सुजाता के बीच नाजायज दखलंदाजी कर रहा था।
1: क्या संबंध है तुम्हारा और सुजाता का?
4: सर हम दोनों एक दूसरे को।
1: हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम दोनों एक दूसरे को?
4: सर बात ये कि सुजाता मुझको और मैं सुजाता को।
1: रुक क्यों गए, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम सुजाता को और सुजाता तुमको, क्या?
4: असल बात ये है सर कि हम दोनों एक दूसरे को
1: प्रेम करते हैं।
4: यस सर।
1: प्यार करते हैं।
4: जी हाँ।
1: मोहब्बत करते हैं, यही ना?
4: जी हाँ सर, जी हाँ।
1: गधे हो तुम अव्वल दर्जे के।
4: जी
1: तुमने अपनी सारी शर्म और हया घोल कर पी डाली है।

0: सुजाता तुमसे प्रेम प्रेम कुछ नहीं करती।
1: मगर सर वो
0: तुम ही एक नंबर के बेवकूफ हो जिसे न अपनी इज्जत का ख्याल है न दूसरी लड़की की इज्जत का।
1: मैंने क्या किया है सर, सब जानते हैं कि मैं और सुजाता काफी नजदीक हैं।
0: लगता है कि शर्म और अकल से तुम्हारी खानदानी दुश्मनी है। कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ तुमने ही डंका पीट रखा है। अगर सुजाता ने अपनी बहन और जीजाजी से तुम्हारा परिचय करवा दिया, तुम्हें अपनी किताबें दे दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। अगर तुम्हारी ये बेहुदा बात मान भी ली जाए कि तुम सुजाता से प्रेम करते हो, तो इसमें सुरेंद्र का सिर फोड़ने की नौबत कहाँ से आई?
1: सर मैं सुजाता से कुछ कहना चाहता था, तभी सुरेंद्र ने उसे छेड़ दिया। मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे उल्टा जवाब दिया, बस बात बढ़ गई।
0: तुम जैसे आवारा और जाहिल लड़के ही कॉलेज के नाम को बदनाम करते हैं। किसी लड़की की बदनामी का दर्द तुम्हें तब मालूम हो यशपाल, जब तुम्हें अपने बहन की बदनामी का दर्द उठाना पड़े।
1: सर मैंने किसी को बदनाम नहीं किया।
0: बको मत, चोरी और सीना चोरी, शर्म तो आती नहीं और ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। अगर सुजाता के पिताजी को मालूम हो गया तो क्या होगा? सुरेंद्र का सिर फूट गया है, उसके घर वाले यहाँ कॉलेज में आएंगे। उन्हें क्या जवाब दोगे तुम और क्या जवाब दूंगा मैं? क्या करूं अब मैं तुम्हारा, पुलिस के हवाले कर दूं या कॉलेज से निकाल दूं?
1: नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं खतावार हूं, कसूरवार हूं। इस बार तो मैं दोस्तों के सिखाने से भूल कर बैठा।
0: कौन है ये दोस्त?
1: मेरी ही क्लास के लड़के हैं सर।
0: क्या सिखाया था उन्होंने?
1: यही कि सुजाता बड़ी घमंडी लड़की है, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अगर यशपाल उसे काबू में लाकर दिखाएं तो हम भी माने कि उसमें कुछ है।
0: और तुम उनकी फूंक में आकर कूद पड़े मैदान इश्क में। ये बताओ कि तुम्हारे कोई बहन है?
1: हाँ सर, दो बहनें हैं।
0: फर्ज करो इसी तरह कोई तुम्हारी बहनों को बदनाम करने की कोशिश करे तो क्या करोगे तुम? चुप क्यों हो, जवाब दो।
1: सर ऐसी बात तो कोई भी नहीं सहन कर सकता।
0: तो जो बेजा हरकत तुम सहन नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरों से कैसे उम्मीद रखते हो कि वो सहन ही कर लेंगे? क्या तुमने ये समझ लिया है कि सुजाता के कोई है ही नहीं?
1: सर सचमुच में मैं दोस्तों के कहने में आकर नादानी कर बैठा, मगर इस वक्त बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ।
0: बस बस ठीक है, मेरे पाँव पड़ने और क्षमा मांगने से क्या होगा? तुम्हारी हरकत से सुजाता को मानसिक कष्ट पहुँचा है और सुरेंद्र को शारीरिक पीड़ा, वे तुम्हें कैसे क्षमा कर देंगे?
1: मैं उन लोगों से भी माफी मांग लूंगा सर, पहले आप तो क्षमा कर दीजिए।
2: मैं अंदर आऊँ सर?
0: आइए
2: सर, रामरख आ गया है।
0: रामरख आ गया है? कहाँ है?
2: बाहर बैठा है, लगता है कुछ नशा करके आया है।
0: अच्छा, अंदर भेजिए उसे।
2: जी बहुत अच्छा सर।
3: जयराम जी की साहेब।
0: जयराम जी की, अब तक कहाँ थे तुम?
3: अस्पताल गए थे साहेब।
0: अस्पताल जाना था तो छुट्टी क्यों नहीं ली, खबर क्यों नहीं दी? तुम्हारी लापरवाही से कितनी परेशानी हुई है हम लोगों को। क्या बीमारी है तुम्हें, क्यों गए थे अस्पताल?
3: बीमारी तो हमें कुछ भी नहीं है साहेब।
0: बीमारी नहीं है तो फिर अस्पताल क्यों गए थे?
3: कुछ काम से गए रहे साहेब।
0: बीमारी का इलाज कराने के सिवाय अस्पताल में क्या काम हो सकता है?
3: होता है साहेब, आजकल अस्पताल में भी काम होता है।
0: क्या होता है, कुछ बोलोगे भी?
3: साहेब हम खून देने को गए थे।
0: खून? कैसा खून?
3: अपना खून साहेब। कल यहाँ एक दुर्घटना हुई, अपने कॉलेज का एक लड़का मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था साहेब। दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुँचाया।
0: अच्छा,
3: कल रात मैंने रेडियो पर एक ऐलान सुना था कि उसी छात्र को खून दिया जाना है, लेकिन ओआर रकम का खून मिल नहीं रहा है और इसीलिए लोगों से दरखास्त की गई थी। प्रिंसिपल साहब, पिछले महीने जब कॉलेज में मेरे खून की जांच हुई थी ना, तो मुझे याद था कि मेरा खून उसी रकम का है, इसीलिए आज सुबह मैं अपना खून देने अस्पताल चला गया, इसी कारण मुझे देर हो गई। हम चपरासी जरूर हैं साहब, लेकिन हमें भी तो अपने छात्रों के लिए कुछ करना है ना साहब।
0: शाबाश रामरख, शाबाश, सचमुच तुमने बहुत नेक और बहादुरी का काम किया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे कॉलेज का एक चपरासी अपने कर्तव्य में इतना आगे निकल गया कि उसने पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ रामरख। तुम्हारे आने से पहले जितना दुखी था उससे कई गुना अधिक खुश हुआ हूँ। ये लो दूध पीना और तुम घर जाकर आराम करो।
3: नहीं साहब, नहीं, रुपए हम नहीं लेंगे।
0: क्यों?
3: अभी जो मन में खुशी है, रुपए लेने के बाद तो हमारा मन दुखी हो जाएगा साहब।
0: रामरख, ये रुपए मैं तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ, शरीर में कुछ कमजोरी आ गई होगी, दूध पियोगे तो कुछ चुस्ती आ जाएगी भैया।
3: नहीं साहब, हमका कमजोरी नहीं आई है, हमें तो और ताकत आ गई है, हम भी दूसरों के कुछ काम आ सकते हैं, इसी खुशी के आगे कमजोरी मालूम ही नहीं पड़ती साहब।
0: फिर भी रामरख बात मानो और ये रुपए रख लो।

0: या हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, रुपए हमको नहीं चाहिए, ये रुपए ले लीजिए साहब।
1: अच्छा तो घर जाकर आराम ही करो, हम खुद घंटी बजा लेंगे।
0: पर साहब घंटी बजाने का काम तो हमारा है ना।
1: अब ज्यादा बात मत करो, जाओ और आराम करो।
0: अच्छा साहब जाता हूँ, मैं तो डर ही गया था कि देर हो गई है, आज साहब नाराज होंगे।
1: अरे नहीं नहीं, नाराज गलत कामों पर हुआ जाता है, अच्छे कामों पर नहीं। अच्छा अब तुम जाओ।
0: अच्छा साहब नमस्ते।
1: नमस्ते। यशपाल
2: जी,
1: तुम सुन रहे थे ये सब कुछ?
2: हाँ सर।
1: देख लो, वो एक अनपढ़ चपरासी है और तुम पढ़े लिखे विद्यार्थी।
2: समझ रहा हूँ सर, वो अनपढ़ इंसान भी मुझे मात दे गया है। मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी अस्पताल में जाकर उतना खून तो दे सकूं जितना सुरेंद्र के सिर से चला गया है।
1: तो तुम समझ चुके हो कि आदमी का खून भी देश की अमानत है।
2: हाँ सर।
1: आपसी झगड़ों के लिए इसे जमीन पर नहीं बहाना है। यशपाल, ये रामरख भी एक प्रेम दीवाना है, अगर तुम्हें प्रेम दीवाना ही बनना है तो रामरख की तरह बनो।
2: यस सर।

0: पर हुआ जाता है, अच्छे कामों पर नहीं। अच्छा अब तुम जाओ।
1: अच्छा साहब, नमस्ते।
0: नमस्ते यशपाल
2: जी।
0: तुम सुन रहे थे ये सब कुछ?
2: हाँ सर।
0: देख लो, वो एक अनपढ़ चपरासी है और तुम पढ़े लिखे विद्यार्थी।
2: समझ रहा हूँ सर, वो अनपढ़ इंसान भी मुझे मात दे गया है। मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी अस्पताल में जाकर उतना खून तो दे सकूं जितना सुरेंद्र के सिर से चला गया है।
0: तो तुम समझ चुके हो कि आदमी का खून भी देश की अमानत है।
2: हाँ सर।
0: आपसी झगड़ों के लिए इसे जमीन पर नहीं बहाना है यशपाल। ये रामरख भी एक प्रेम दीवाना है। अगर तुम्हें प्रेम दीवाना ही बनना है तो रामरख की तरह बनो।
2: यस सर।

प्रेम दीवाना। हवा महल के अंतर्गत अभी आपने ब्रजभूषण की लिखी ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे पुरुषोत्तम दारवेहकर।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और आइए अब हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों की श्रृंखला फिल्म संगीत में।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के गाए इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है FM 103.2 MHz पर। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने

0: भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
0: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक
2: में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे

0: विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
2: That we will convert the current situation.
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: listing और housing census, यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में

0: रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96 रुपये और 53 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले दो से तीन दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और तीन एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में दो विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये झालावाड़ केंद्र है FM 103.2 MHz पर। रात्रि के 9 बज रहे हैं और अब समय है आपके कार्यक्रम सबरस का। सबरस के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गैर फिल्मी गीत, गजल और भजन। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आइए सुनते हैं ये भजन।

इस भजन में यह वर्णन है कि मनुष्य अलग अलग अवस्था में अलग अलग कार्य करता है। एक काम करना भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना। ऐसे कौन से कारण हैं कि वो भूल जाता है भगवान का नाम लेना, वही एक एक अवस्था को लेकर समझाया।

सोनू कक्कड़ की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत, और आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं कैलाश खैर की आवाज़ में।

अभी आपने सुना हिमेश रेशमिया का गाया ये गीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पंकज उदास की गाई ये गजल।

पंकज उदास की गाय इस गजल के साथ ही आज का सबरस का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।